0: ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नरम हो जाएं, और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कसमें खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त हो और इसके अलावा बदजात है, इस सबब से कि माल और बेटे रखता है। जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अन करीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे।
1: إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمَنَّهَا

सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरा दांव बड़ा मजबूत है। ए नबी, क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाती हैं? सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार किए रहो, और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको न संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते मजमूम हालत में। फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकुकारों में शामिल कर लिया। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे, और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे, उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था और जितने आदमी जमीन पर हैं, गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया फिर सेंत सेंत कर रखा।
1: صدق الله العظيم।
2: ए अल्लाह, ए हमारे रब, ए कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ए अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बर्रे सगीर में इस सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायद आजम की क्यादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ए अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ए अल्लाह, अपने रहम व करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत व आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ए अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता। आमीन।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

लोग, बड़ा आदमी, बड़े इंसान किसको बड़ा कहते? जो बहुत मालदार हो, बहुत स्टेटस रखता हो, बहुत उसकी मकबूलियत हो, बहुत मशहूरी हो, उसी को बड़ा आदमी कहते हैं। ना तो उसका कद बड़ा होता है और ना ही उसकी चार आंखें होती हैं और ना ही चार हाथ होते हैं। होता वो आम इंसानों की तरह ही, लेकिन चूंकि उसके पास माल बहुत है या औलाद बहुत है और इक्तदार है, स्टेटस वाला है, लिहाजा मकबूलियत बहुत है, बहुत पॉपुलर है, वो बड़ा है। इस पैमाने पर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखते थे। अच्छा, इनकी जमीनें कितनी है? जमीन तो है ही नहीं। माल कितना है इनके पास? सोना चांदी के ढेर कितने? बाग कितने? कोई ओहदा, कोई पॉपुलैरिटी, कुछ भी तो नहीं। फिर कैसे बड़ा मान लें इनको? कोई चीज तो होती बड़ा होने की। इनके नजदीक नबी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल ऐसे जैसे आज के दौर में किसी शख्स के पास दीन का इल्म होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई तो मरूबियत नहीं उससे। कोई दीन का आलम अच्छा होगा, लेकिन कोई किसी दुनियावी डिग्री का मालिक हो, एकदम दिल बैठ जाएगा। अच्छा, ये पड़ा हुआ है, सांस उखड़ने लगी सिर्फ सुन के। यही मुश्किल थी ना इनकी भी, कि वो बड़ाई के मेयार जो खुद बनाए हुए थे उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिट नहीं उतर रहे थे। तो कहते थे कोई निशानी लाओ, यानी इनमें से कोई चीज हमको दिखाओ, क्योंकि जहां आगे आप पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल निशानियां मांगते हैं, उसमें इन चीजों का जिक्र करते हैं कि इनमें से तो कुछ हो, कोई हाय हू हो, कोई आगे पीछे हो, कोई शान और शौकत हो। कैसे मान लें कि तुम एक सादा से इंसान नबी हो गए? लौला उन्ज़िल अलैही आयतुम मिन रब्बी, कोई अलामत तो होती नबी होने की, कोई निशानी तो आती। अल्लाह ताला क्या फरमाते? इन्नमा अंत मुन्ज़िर, आपका काम डराना है, खबरदार करना है। वलिकुल्ल कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक ना एक हादी आया है, रहनुमाई करने वाला आया है। वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, यानी आप कोई अनोखे नहीं, पहली दफा नहीं आए, पहले भी लोग आते रहे, इसलिए मत अचंभा करो, मत हैरान हो कि आपके आने पर तुम इस खबर को, इस हकीकत को हजम नहीं कर पा रहे कि एक नबी आ गया तुम्हारे दरमियान। हैरानी की क्या बात है, बहुत कौमों के पास नबी आए, ये भी उन जैसे एक नबी हैं, एक हादी हैं। इसके बाद फिर अल्लाह ताला कुछ अपनी कुदरत की निशानियां दिखाते हैं। अल्लाह यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह जानता है जो कुछ उठाती है हर मादा, हर फीमेल, खा इंसानों में से हो या जानवरों में से, जो हमल वो उठाती है अपने पेट में, अल्लाह को वो भी पता है, खुद उस माँ को नहीं पता होता, और बाज केसेस में कई कई महीने उसको नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या पल रहा है, लेकिन अल्लाह को पता होता है। मा तहमिलो, उठाती ही है तो पता चल जाता है। ऐसा इल्म किसी और के पास नहीं, ये तो टेस्ट करने पड़ते हैं, मशीनें लगानी पड़ती, फिर जाके पता चलता है, और बाज़ वक़्त वो भी गलत पता चलता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसी कोई गलती नहीं, ऐसा कोई सहारे की जरूरत नहीं। हम बाज़ वक़्त कहते लो डॉक्टर्स को भी तो पता चल जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो नऊज़ बिल्लाह, उससे फिर हम क्या करते हैं? बाज़ वक़्त डॉक्टर्स को खुदा बना बैठते हैं, दिल ही दिल में उनको बड़ा समझ बैठते हैं, हालांकि कभी ये गौर नहीं करते कि वो खुद उस इल्म के लिए किस किस चीज के मोहताज हैं। वो ना हो तो उनकी कुछ भी नहीं चलती, उनको कुछ भी इल्म नहीं होता। कितना कुछ पढ़ा उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए, और अब भी कितनी मशीनें चाहिए उस इल्म को इस्तेमाल करने के लिए, और इन सारी फैसिलिटीज के बावजूद बेशुमार गलतियां करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताला को किसी सहारे की और किसी चीज की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्टली खुद पता है।
اللہ

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर यू कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003855 69

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइब्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान

0: हुकूमत जी पीटीआई विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु ॿीहर थींदो। हुकूमत जी पीपल्स पार्टी जो अपोज़िशन खे क़ौमी मसइलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए गॾण ते ज़ोर। ॿिन्ही धुरियुनि जो ॻाल्हियूं जारी रखण ऐं अॼु ॿीहर गॾिजाणी करण ते इतफ़ाक़। स्पीकर ऑफिस पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन विच में मुल्की सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थियूं। हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन हिक ॿिए खे पंहिंजे मौक़िफ़ खां आगाह कयो। स्पीकर अयाज़ सादी ॻाल्हियुनि लाइ अहम किरदार अदा कयो। ॻाल्हियुनि में हुकूमत तरफ़ां घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, राना सनाउल्लाह, अमीर मक़ाम तारिक फज़ल चौधरी ऐं तलाल चौधरी शरीक थिया। पीपुल्स पार्टी जी नुमाइंदगी श्री रमा नवीद कमर ऐं एजाज़ जखराणी कई। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गौर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम, राजा आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हुआ।
1: ये पहला मरतबा है कि हमारी और हुकूमत की ऐसी कमेटी बनी है जिसमें हम सारे लोग मौजूद है स्पीकर साहब के चैम्बर में। मुस्बत पहलू यही है कि कंटिन्यू है, कल इंशाल्लाह ताला
2: हमारा गवर्नमेंट से भी तो नुमाइंदगान शामिल होंगे,
1: यही कमेटी होगी, यही हमारी कमेटी है। खान साहब के जो अहकाम होते हैं हम हमेशा खान साहब के अहकाम ही पे अमल दरामद करते रहे।
3: असल ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, कल फिर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद फिर फैसला होगा क्या करना है।
0: हुकूमत सां सुठे माहौल में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु मंझंदि 2 वॻे थींदो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त उमेद आहे त सूरतहाल बहितरी तरफ़ वेंदी। सेनेट में अपोज़िशन लीडर चयो त असां पंहिंजूं तजवीज़ ॾिनियूं आहिनि, हुकूमत पंहिंजूं तजवीज़ ॾिनियूं आहिनि, ॿीहर ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं।

0: और हुकूमत के लिए भी क्या और लॉन्ग मार्च के बारे में इतना होंगी जो पाकिस्तान के दुश्मनी का मौसम है तो बरसात में चलने के गैर मशहूर तरीके से पीटीआई ने लॉन्ग मार्च को तो खत्म ही करना होगा, मजबूर करी नहीं, मनसूख नहीं, पोस्टपोन नहीं, खत्म करना होगा। नो वे, क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ये में मुस्तकिल एक दहशत गर्दी की पोलिटिकल मैसेज चल रही है, चाहे वो टीटीपी जो भी है, बहुत सारे ग्रुप्स हम जब देखते हैं कि सूरत हाल ये है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, पुलिस शहीदत हो रही है, तो पीपल्स पार्टी का तो मौसम नहीं रहा है कि हम दहशत गर्दी के लिए हमारी रेड लाइन है।
1: पीपल्स पार्टी पीटीआई खां हिकु भेरो ॿीहर लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर ख़त्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदार हुकूमत ऐं मुख़ालिफ़ धुर विच में ॻाल्हियुनि खे सुठो सहुण करार ॾेई चयो आहे त मुख़ालिफ़ धुर पंहिंजो लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर ख़त्म कंदी। पाड़ेसरी मुल्कनि मां दहशतगर्द ग्रुपनि खे मिलंदड़ फार हमायत घंटी जोगी आहे। सेनेटर श्री रमा चयो आहे त लॉन्ग मार्च जे तारीख़ वधाइण या मुल्तवी करण सां मसलो हल न थींदो, पीटीआई लॉन्ग मार्च ख़त्म करे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
8: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर।
7: होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
8: न अदा।
10: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
8: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
9: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
8: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
10: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
9: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
11: 0301-399-2836
10: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1556-724।
12: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03008569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर 0301-3865453।
0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
4: अरे न खुश ऐं बीरोनो की स्किन हाँ इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुनजी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 0300-338-5569।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
0: White Ash Beauty Cream. Glowing

रतोदरो में हथियारबंदन जी फायरिंग वाटेड़ो समेत पंज जणा कतल, जेकमा बाद रोड ते दुकान ते हथियारबंदन जी फायरिंग में घांगरा बरादरी जा चार जणा एक वाटेड़ो कतल। मारजी वेलन में रियाज हुसैन घांगरो, रजब कुर्बान, बिलावल घांगरो ए अब्दुराज शामिल आहिन। पुलिस जो चवण आहे त घांगरा बरादरी जे मुख्तलिफ़ बरादरियुनि सां तकरार हलंदड़ आहे, वधीक जांच कई पई वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणज पहिरियों कदम वधायो।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 and 0242-460-1000।
5: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
7: सुपर वाइट।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
9: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
10: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सिंध की आवाज
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क।
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

फटा कर लोगों के दिलों को चाहत से फटा करते हैं दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम। यू आर शोइंग इनटू योर रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

Bazaar here, sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics. Super White Products by Aksa Cosmetics, जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं. और इसी के साथ हम आगे चलते हैं. 11:14 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है. और वो तमाम तो लोग जो कि हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी. बट अल्लाह देना वर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. खुदा खैरियत है मौजूदा और तब के लिए खुदा खैरियत है.

वो तमाम तो लोग जिन लोग या सालगिरह है उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स और ये हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो के बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो के लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए. इसके अलावा शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबा बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगल जी आया नसर बिस्मिल्लाह वो जोर चाओ निहाओ एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें सुपरवाइज्ड बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स को लेकर जो मैं आपसे करना चाहती हूँ या जो आप मुझसे करना चाहते हैं वो सब आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और इसी के साथ हम चलेंगे आगे. एंड हियर कम्स आसिम अज़हर विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग. सुनते हैं एंजॉय करते हैं आगे चलते हैं.

Okay, Zindagi Gulzar is sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics. Aur isi ke saath hum chalenge aage ji aur Super White ke products ke bare mein aapko batayenge. Aur Super White ke products ke taamun se hi aap ye program sun rahe hote hain. Ye khoobsurti bhara khoobsurat se safar jo ke pure 1 baje tak daily basis pe aap log enjoy kar rahe hote hain. So exactly aaj bhi karenge and Super White ke products ke bare mein agar baat ki jaye to hame की तरह सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स सुपर से भी ऊपर हैं और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि वो लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स में सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी सोप और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज कर रहे होते हैं या अगर आपने अभी तक यूज नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. ठीक है जी, सुपर वाइट की विटामिन सी ब्राइटनिंग क्रीम आती है, सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश आता है, इसके अलावा सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश आता है, इसके अलावा सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का एंटी डलनेस फेस वॉश आता है जी, ये आता है टर्मेरिक में, ठीक है. और सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट का राइस ब्यूटी सोप आता है, सुपर वाइट का राइस कोलेजन एंटी एक्ने क्रीम भी आती है जी. और इसके अलावा इनका एक अदद सुपर वाइट राइस सिरम भी आता है जिसको इंक्लूड करने से, जिसको ऐड कर देने से आपके जो क्रीम के रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाते हैं और मजीद और इनहेंस हो जाते हैं. तो ये कमाल की बात है. इसके अलावा सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी सोप, इसके अलावा सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, ठीक है. तो ये है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स. और जी सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम जिसको हम बूस्टर भी कह सकते हैं जी, अल्फा आरबोटीन इसमें मौजूद है, नाइसिनमाइड इसमें मौजूद है, विटामिन B3 एंड कोजिक एसिड इसमें मौजूद है. तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं. और क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी स्किन हो रही है डल, आपकी स्किन हो रही है बेरोनक और आपका कॉम्प्लेक्शन हो रहा है डाउन, या फिर आपके फेस के ऊपर हो रही है एक्नी, एक्नी के निशान, बहुत सारी छाइयां, ये सब कुछ हो रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है. टेंशन को खत्म करने वाली बात है और वो बात है जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स की. सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स की बातें हम आपसे पूरे पूरे 1 बजे तक करते रहेंगे और आप हमसे करते रहेंगे. तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने सबसे पहले बाय करना है मार्केट जाके, ठीक है. अब कौन सा किस लिए बाय करेंगे वो तो आपको 2 दिन में अंदाजा हो ही चुका होगा, लेकिन जिन लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है उनको अंदाजे हम लगवा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है. सो जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज करेंगे, इसके फॉर्मूलाज भी बना के आप लोग यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, और जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चलेगा. और जो कोरियन ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं या अपनी स्किन को बनाना चाहते हैं, तो कोरियन ग्लास स्किन को बनाने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट का राइस फेस वॉश, ठीक है. तो इसको यूज करने से आपकी जो डलनेस है वो खत्म होती है, चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, ओपन पोर्स मिनिमाइज होते हैं और आपकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है डे बाय डे.

साथ साथ आप लोग प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी. और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने करना यह है कि सबसे पहले वो तमाम तो लोग जो कि सिंपली मैसेज करना चाहते हैं, जो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 1 पे. और कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज www.facebook.com/gfm88 और जी लालकाना FM 88.8. इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग,

0: जो भी होती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग, ठीक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद मुझसे बात करेंगे, ठीक है। तो जी, इसके अलावा हम चलेंगे आगे और प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे एक और गाना, और वो जो एक और गाना है मैं सोच रही हूँ कौन सा होना चाहिए, और वो गाना बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो हम अच्छा सा गाना प्ले करेंगे।
1: पास हो मानू मैं सारी अपनी गलती, तूने के साथ में कोई अलबी, जे तू कवे ते आज भी मैं दू।
0: और गाना प्ले करने जा रहे हैं जी एक और ब्यूटीफुल, एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल महेसर। इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय एक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: तो उनका दोस्त होने को टीवी हकी मने तो आशिक निसी हकी मके खिले पियो ताकि पुछे तो छोकियो खिली ताशिक जियो

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एस।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर,
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
10: कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं जी, और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आपको दे रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरती, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, क्योंकि जब इंसान खूबसूरत होता है, वो कहता है ना कि जब खूबसूरती आती है, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना कि जब खूबसूरती आती है तो नज़ाकत आ ही जाती है, ऐसे कुछ है, कुछ कहते हैं ऐसे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन है यही। तो बिल्कुल नजाकत भी आएगी और अगर कोई नजाकत नाम का बंदा लगाएगा तो डेफिनेटली उसके पास डबल नजाकत हो जाएगी, क्योंकि उसका नाम भी नजाकत और प्रोडक्ट्स यूज करने से भी नजाकत आएगी. तो क्या बात है. अच्छा, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज करेंगे, और यूज किस लिए करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसले हैं स्किन को लेकर, और वही बहुत सारे मसले मसाइल जिनको देखते हुए सुपर वाइट अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है. तो अगर आप भी किसी न किसी डलनेस का शिकार हैं या एक्नी का शिकार हैं, एक्नी को फेस कर रहे हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप लोग यूज कर सकते हैं. क्या यूज करेंगे? सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम को. अच्छा, सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम खास तौर पे उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है. पिगमेंटेशन हम किसको कहते हैं जी? छाइयों को. छाइयां जब फेस के ऊपर हो जाती हैं तो वो काफी टाइम तक नहीं जाती. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे खाने पीने से एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से भी हो जाती है, या बहुत सारे लोग जो कि आयरन कंज्यूम नहीं कर रहे होते उसकी वजह से भी हो जाती है. तो उसको खत्म करने में एक अरसा लग जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अरसा ना लगे और ये जल्दी जल्दी से जो है खत्म हो जाए और इसमें कोई बेहतरी नजर आ जाए, तो वो आप लोगों ने यूज करनी है सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम. सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम जो कि एंटी एजिंग भी है और आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को मुकम्मल तौर पर खत्म करेगी, क्योंकि विटामिन सी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज्यादा मुफीद होता है. तो पिगमेंटेशन को खत्म करेगा. और विटामिन सी ब्यूटी क्रीम जो कि सुपर वाइट वालों की है, इसमें बहुत सारे ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन का नामो निशान तक खत्म कर देंगे. इसमें मौजूद है लेमन के नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और नीम के एक्सट्रैक्ट्स और विटामिन सी. तो ये सब कुछ मिलकर आपकी स्किन से खत्म करते हैं जी एंटी एजिंग लाइंस को, ब्राइटन अप करते हैं आपकी स्किन को, पोर्स को मिनिमाइज करते हैं. अब इसके फायदे गिनते जाएं, और आपकी ब्लेमिशेस को खत्म करते हैं, डार्क स्पॉट्स को खत्म करते हैं, एजिंग स्पॉट्स को रिड्यूस करते हैं जी, और फेयरनेस को इंक्रीज भी करता है. ठीक है जी. तो ये इतने सारे फायदे जो कि एक ही ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद हैं, और वो ब्यूटी क्रीम है सुपर वाइट की वाइटनिंग विटामिन सी ब्यूटी क्रीम. मजे की बात यह है कि इसमें एक्टिव फ्रूट बूस्टर्स भी मौजूद हैं जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी हैं. तो ऑल स्किन टाइप्स वाले लोग इसको लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो. तो ये सबको खत्म करेगा, मतलब कि सारी स्किन टाइप से सारे मसले मसाइल को खत्म करेगी विटामिन सी की क्रीम सुपर वाइट वालों की. ठीक है जी. तो सुपर वाइट की ये क्रीम जो कि लाइट वेटेड है, डेली यूज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको डे में भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं. आपका जो नेचुरली कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है उसको रेडिएंट करेगा, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा, आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा. और आप लोगों ने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको यूज करना है. यूज करने से पहले विटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करना है. सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश, उसको अच्छे तरीके से फेस को वॉश करें उससे, एंड इसके अलावा ड्राई होने तक छोड़ दें, और फिर ड्राई होने के बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें विटामिन सी की क्रीम. सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम को अप्लाई कर लें जेंटली अपने फेस के ऊपर, अपने नेक के ऊपर. ठीक है जी. तो आप इसको हाथ और पांव पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई हल्की फुल्की टैनिंग हो गई है गर्मियों की वजह से. फिर अब तो गर्मी जा रही है, तो गर्मी जो टैनिंग छोड़ गई है उसको भी तो खत्म करना है ना. तो गर्मी की टैनिंग को खत्म करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हाथ और पांव के ऊपर भी. तो ये आप लोग कर सकते हैं, तो आपको इसके बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे. अच्छा, साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी मूव करते हैं जी. एंड कमेंट्स और मैसेजेस जो कि आप लोगों के मुझे बहुत सारे रिसीव होते जा रहे हैं, साथ साथ आप लोगों की कॉल्स को भी इंटरटेन करेंगे हम. एंड मुश्ताक अहमद कुंबर से हमें सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत नाइस है, थैंक यू सो मच. रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक कुंबर से हमें सुन रहे हैं, अर्ज मोहम्मद गोला हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा علاوہ جی ارج محمد گولا, اس کے علاوہ حافظ یونس بابر ہمیں سن رہے ہیں, ملک نظر محمد ہمیں سن رہے ہیں جی, تھینک یو. کالز کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن کالز کو لینے سے پہلے میں کالز کا رول بتا دوں ذرا. وہ لوگ جن لوگوں نے کل اور پرسوں کال کی تھی وہ آج کال نہیں کریں گے, ڈیلی بیسس پہ وہی چار پانچ کالرز سیم سیم, ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نہیں کریں گے, اور اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے کال ڈراپ کر دی. اگر آپ نے کل کال کی ہے آج کال کریں گے, ٹھیک ہے, میں کال ڈراپ کر دوں گی. تو بہتر ہے کہ آپ نے دو دن کا گیپ دے کے کال کرنی ہے, تو آپ لوگوں کی کالز کو ہم ریسیو کریں گے, اور جب ہم کالز کو ریسیو کریں گے تو پھر اچھا بھی لگے گا کہ دیکھیں بہت سارے لوگ نئے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے جو پرانے لسنرز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. تو یہ چیز ہے, تو ضرور 03000113488 کے اوپر آپ لوگ کال کر رہے ہیں مجھے, اور فرسٹ کالر آن دا کال میں امید کروں گی سیم کالر نہیں ہوگا. ہیلو, وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
0: حافظ لکھمیر مور بات ہوا, حافظ لکھمیر مورو سے بات کر رہا ہوں.
10: حافظ لکھمیر کیسے, ٹھیک ٹھاک؟
0: الحمدللہ, آپ سنائے ٹھیک ٹھاک ہیں؟
10: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. پروگرام سن رہے ہیں؟
0: جی جی پروگرام سن رہا ہوں. سپر وائٹ آئل بیوٹی کریم, آئل تھری بیوٹی کریم.
10: سپر وائٹ بیوٹی کریم, تو سپر وائٹ بیوٹی کریم کب یوز کر رہے ہیں, اور سپر وائٹ کا کون سا پروڈکٹ یوز کریں گے؟
0: ہم بس انشاءاللہ آج لینے جائیں گے.
10: اوکے, ضرور لیجیے, اور لینے کے بعد جو ریزلٹ ملے مجھے ضرور بتائیے. اچھا, ہمارا سیگمنٹ ہے جی سر لگاؤ گانا سناؤ, تو سر لگاؤ گانا سناؤ میں کون سا گانا سنا رہے ہیں جلدی سے؟
0: ہاں گانا سناؤ آپ کو.
10: یس,
0: اور پلے کرنا, ٹھیک ہے؟
10: اوکے,
0: مجھے نہیں آ رہا لیکن پلے کرنا.
10: اوکے,
0: وہ دل وارا سکھے کیا وسارا تو میں

0: ओके वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें।
1: हमारा दोस्त है,
0: हाँ जी,
1: हाफिज सावर ढिल्लू साहब, शमी ढिल्लू साहब, हाफिज जानू में ढिल्लू साहब, सर दर्द और मुस्कान साहब, और जो भी सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, और मेरे ख्याल से ये रहा आपका गाना।

0: ओके जी, एक और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, इसको जरा सा क्लियर कर लो सरदर्द।
1: अच्छा, अभी ठीक से आ रही है?
0: अब ठीक आ रही है। मुझे बताओ कि इतने दिन बाद कॉल कर रही हो, कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप तो इतने दिन बाद शो करें ना, दो दिन से आप करें।
0: मैं इतने दिन बाद, वाकई में पूरे मंथ बाद आई हूँ।
1: सांस में सांस आ गई अभी आपकी आवाज सुनते।
0: अरे वाह, क्या बात है। इसी बात पे
1: आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना मिस किया मैंने आपको।
0: मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया, आपको भी बहुत मिस किया मैंने। यस, एग्जैक्टली। और जहाँ रोज मॉर्निंग में आके एक मतलब कि रूटीन बन जाना, शो करना, अपने लिसनर से कनेक्ट कर पाना, तो वो रूटीन एकदम से जो है खत्म हो गई थी, या ये कह लें कि एक मंथ के लिए रुक गई थी। तो डेफिनेटली जहाँ आपने मुझे मिस किया, तो वहाँ पे मैंने अपने सब लिसनर्स को भी बहुत मिस किया। यस, एग्जैक्टली। इसी बात पे मुझे कोई अच्छा सा मिस करने वाला गाना सुना दो।
1: मिस करने वाला?
0: हाँ। क्या बात है। अच्छा सरदर्द, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स कब यूज करने हैं आपने?
1: अभी तो प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया, सुन के फिर बता दूंगी आपको।
0: सुन के मुझे फिर बता देंगी? ओके, ठीक हो गया। और कुछ कहना है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी। एंड ये रहा गाना। अच्छा, मैंने इसको ना मूवी वाले वर्जन में प्ले किया है, ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह।

I'll give you a beautiful song, just like Super White Strawberry Korean Formula Beauty Cream. और ये Korean Formula जो कि आपकी skin को Korean glass skin देगा. देखें, एक Rice Beauty Cream है इनकी जो कि Korean Formula से तैयार की गई है. एक Super White की Korean Formula Strawberry Beauty Cream है. Strawberry के flavor में 3 days में visible results देगी. ठीक है, तो जिन लोगों को खाने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है, अब वो लगाने में भी पसंद करें इसको और लगाएं सुपर वाइट का कोरियन स्ट्रॉबेरी फॉर्मूला, जो कि आपको मिल जाता है सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम में स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ. बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस, बहुत खूबसूरत टेक्सचर और बहुत ही खूबसूरत बना देने वाला फॉर्मूला. पहले 3 दिन में रिजल्ट देखेंगे. तो अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ग्लो के लिए बनाते हैं. क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट. और जब लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे तो वो उससे भी कहीं ज्यादा.

और इसके साथ अगर इसके रिजल्ट को डबल इनहेंस करना चाहते हैं तो जी इसके साथ यूज करेंगे सुपर वाइट की कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश, ताकि आपके जो रिजल्ट हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएं और पहले ही 3 दिन में आप ये वाजे फर्क देखेंगे। और हम साथ में गाना भी चेंज करेंगे एंड मैं सोच रही हूँ कि अच्छा सा गाना हम प्ले कर दें एंड अच्छा सा गाना हम प्ले करेंगे। और मैंने बड़े अच्छे अच्छे गाने सर्च करके आप लोगों के लिए रखे हुए हैं जी, और रखने से मकसद ये है कि सुनाने भी हैं आपको। तो हम प्ले करते हैं जी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड हियर कम्स हसन रहीम एंड नताशा नूरानी। सुनेंगे इस गाने को, जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक की जाने, दोनों के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Supervibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: रतो देरो में हथियारबंदन जी फायरिंग पंज जणा कतल मारजी वेलन में पी ऐं संदस टे पुट शामिल आहिनि जैकमाबाद जे रोड ते हथियारबंदन जी दुकान ते फायरिंग थी आहे रियाज हुसैन घांगरो रजब कुर्बान बिलावल घांगरो ऐं अब्दुल्ला बरोही मारजी विया आहिनि पुलिस जो चवणु आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे घांगरा बिरादरी जे मारजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतो देरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि वधीक जांच जारी आहे सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारिजी दहशतगर्दनि जे ताक़तुनि खे निशानो बणायो वियो जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया बलोचिस्तान जे माश्केल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फ़रार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु थींदो ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतकिली जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुर्तवी या ख़तम करण जो मुतालबो कयो अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जमनी हुसैन खां लातालकी ज़ाहिर करे छॾी ईरानी परॾेही वज़ीर हुसैन ते हमला करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी परॾेही मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्ची हुसैन जे विच में ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालकी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे चक जे कचे में पुलिस ऑपरेशन दौरान गुज़िरियल ॾींहुं मारिजी वियल मुबैना ॾोहारीअ जो लाश वारिस बिना पोस्टमार्टम खणाए विया गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठ वरियाम जतोई में ऑपरेशन दौरान शाबेक पुट लश्करी जतोई मारिजी वियो हो पुलिस हदबंदीअ जो जवाब ॼाणाए पोस्टमार्टम लाइ लेटर जारी न कयो वारिस औरतुनि लाश बिना पोस्टमार्टम जे खणाए वई गंबट में आरे जा बिरादरी जे ॿिनि दुरीनि में झेड़े में मारिजी वियल हिकु ॼणे जो केस दाख़िल मुख्य जवाबदार ताहिर आरे जो गिरफ़्तार केस में टे ॼणा नामज़द थियल
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
7: Super White Oil Free Beauty Cream. Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
8: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणज पहिरियों कदम वधायो खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक बुक करवाएं। पता: रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
9: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
10: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
9: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
10: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
9: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
11: सुपर वाइट।

0: कंट्री हो तो सिंपली है GFM 88 नेटवर्क सिंपली आवाज।
1: Rockin' the party.

once again. आगे वापस आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइपर अक्सा कस्मेटिक्स और आप सुन सकते हैं पूरी 1 बजे तक.

आगे जी सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स, और सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स जिसमें आती है जी इनकी पेट्रोलियम जेली एंड फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रेंज. अच्छा मैं ब्रेक में इसके फेस वॉशेस की रेंज को देख रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी. मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा फेस वॉश इसमें से अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं कौन सा करूँगा, क्योंकि मुझे सारे ही अच्छे लग रहे हैं. और पैकेजिंग इतनी कमाल की है ना, पैकेजिंग देख के ही आपका हर प्रोडक्ट पे दिल आ जाए, क्योंकि हमेशा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ना वो बताती है कि प्रोडक्ट कैसी होगी. तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत कमाल की है, बहुत जबरदस्त थी जी. और ऐसी पैकेजिंग है कि देखते साथ ही आपका दिल आ जाए. तो फेस वॉशेस की रेंज में इनका राइस फेस वॉश आता है, टर्मेरिक फेस वॉश आता है, इसके अलावा जी इनका कौन सा फेस वॉश आता है, इनका विटामिन सी फेस वॉश आता है. विटामिन सी फेस वॉश बड़ा कमाल का फेस वॉश, और सुपर वाइट टर्मेरिक फेस वॉश, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, तमाम उन लोगों के लिए जिनका फेस ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है. ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन उस स्किन को कहा जाता है जिनका जो टी जोन एरिया है फेस का, यानी कि नोज से लेके कुछ फोरहेड का कुछ चिन तक, तो ये टी जोन एरिया कहलाता है जी. और ये आपका ऑयली है और बाकी सारा ड्राई है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन. ठीक है, इसमें आपकी ऑयली स्किन भी आ गई, इसमें बाकी सारी आपकी ड्राई स्किन आ गई, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी. अगर आपका कुछ फेस का हिस्सा ऑयली रहता है और कुछ ड्राई रहता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं. और जिन लोगों का पूरा फेस ही ऑयली रहता है तो उनकी स्किन टाइप है ऑयली. ठीक है, तो दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं ऑयल कंट्रोल करने के लिए. और ऑयल कंट्रोल करेंगे इससे और फेस को इससे वॉश करेंगे, दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करें वॉश करेंगे और देखेंगे कि ऑयल कंट्रोल फेस वॉश को यूज करने से क्या फायदे आपको मिल रहे हैं. तो इसके जो फायदे हैं ना, एक तो ऑयल को कंट्रोल करेगा, एवोकाडो की खूबियां इसमें मौजूद हैं, आपके जितना भी मतलब के फालतू ऑयल होगा ना चेहरे पे उसको रिड्यूस करेगा. और क्या करेगा, आपको 100 ml की पैकेजिंग के अंदर मिलता है, बहुत कमाल की पैकेजिंग है जी. और इसके अलावा विटामिन सी फेस वॉश, जैसे कि मैंने कहा, उन तमाम तो लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन का मसला है, पिगमेंटेशन का इश्यू है, और पिगमेंटेशन नहीं जाती है, खत्म नहीं होती है, तो इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट मौजूद है, विटामिन सी एक्सट्रैक्ट मौजूद है, लेमन एक्सट्रैक्ट मौजूद है, और नीम एक्सट्रैक्ट मौजूद है जो कि विटामिन सी को इसमें बनाते हैं जी. और विटामिन सी जो कि आपकी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बड़ी इफेक्टिव रहेगी, तो इसको यूज करने से आपकी पिगमेंटेशन कैसे जाती है वो आप देखेंगे. ठीक है, तो दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करेंगे विटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करेंगे और फिर अपनी पिगमेंटेशन को खत्म होता हुआ देखेंगे डे बाय डे. अच्छा, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, इनका बड़ा कमाल का और बड़ा क्यूट सा फेस वॉश है. स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब क्यूट लगते हैं जी. और एंटी एक्ने भी है ये, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ ही आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है जी, 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देता है. अगर इसके साथ इसकी क्रीम भी यूज करते हैं तो सोने पे सुहागा. और इसके अलावा जी सुपर वाइट की टर्मेरिक ऑयल कंट्रोल एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, सुपर वाइट का एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, टर्मेरिक जो है इसमें मौजूद है, टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट और टर्मेरिक की बहुत सारी चीजें. ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, फ्राइनेस को बढ़ाने के लिए. तो क्या कमाल के फेस वॉशेस की रेंज है. और लास्ट में हम बात करेंगे जी सुपर वाइट की राइस कोलेजन फेस वॉश की, सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश जिसमें कोलेजन मौजूद है, कोजिक एसिड मौजूद है, राइस की इतनी जबरदस्त किस्म की खूबियां मौजूद है जो कि आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बना देगी कुछ ही दिन में. ठीक है, सर्दियां आ रही है, पेट्रोलियम जेली भी आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट वालों की, और सुपर वाइट वाले बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में पेट्रोलियम जेली भी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. और एक बड़ा सा जार उसका बाय कर लें क्योंकि सर्दियों में इसकी भरपूर जरूरत आपको पड़ने वाली है. आप मुझे कॉल कर सकते हैं जी 03000113488 के ऊपर. अच्छा, मैं सोच रही थी कि 2 दिन से हमने टंग ट्विस्टर नहीं खेला, तो हम टंग ट्विस्टर आज तो नहीं खेल, कल से खेलेंगे हम. एंड कॉल्स आप लोगों की लेंगे, मैसेजेस आप लोगों के इंक्लूड करेंगे, और कमेंट्स आप लोगों के इंक्लूड

0: कॉलर कॉलर मौजूद है जी नेक्स्ट। हेलो
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन किधर से?
1: बाजी मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, सलाम कंदरा से।
0: मोहम्मद?
1: मोहम्मद आलम।
0: मोहम्मद आलम कैसे, ठीक ठाक?
1: दुआ दुआ अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र मालिक का एहसान है बाजी।
0: ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ नहीं नहीं, दूसरा कल की थी मैंने,
0: दूसरा चक्कर कॉल की है।
1: हाँ जी जी।
0: अच्छा तो मुझे बताएं कि कौन सा प्रोग्राम है ये?
1: बाजी ये प्रोग्राम है जिंदगी गुलजार है।
0: जिंदगी गुलजार है, किसके तामुन से है?
1: वो सुपरवाइज।
0: सुपरवाइज के तामुन से है, ओके। तो मुझे बताएं कि सुपरवाइज के प्रोडक्ट्स को कब लेकर आ रहे हैं?
1: जल्द जल्द इंशाल्लाह खरीद करेंगे।
0: जल्द खरीद कर लें, इस ऐसा ना हो कि सुपरवाइज के प्रोडक्ट सुपर से ऊपर चले जाएं।
1: नहीं नहीं,
0: और आपका हाथ ना पहुंचे वहां तक। चलें ठीक है, ओके। और कुछ कहेंगे
1: बाजी? एक नगमा सुनाओ।
0: एक गाना सुनाएं, मैं आपको दो गाने सुनाऊंगी, बताएं।
1: चिट्ठी जरा सही जिसे नाम लिखी दे।
0: ओके जरूर सुनवाते हैं आपको, जरूर सुनवाते हैं, थैंक यू।
1: बड़ी मेहरबानी, जो सुनते हैं सारे को सलाम, आपको सलाम। ओके
0: थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज जी। और नेक्स्ट कॉलर हम लेंगे 03000113488 के ऊपर। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से?
2: आदिमा कुर्बान अली खास के लिए को बुलाया, गोठा जी गुलाम खास के लिए लगी झंडो मरिया।
0: कुर्बान भाई कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: सुपर
0: सुपर
2: सुपर सुपर जी किरमिजी टाउन का प्रोग्राम था।
0: सुपर वाइट
2: सुपर वाइट
0: सुपर वाइट बिल्कुल सुपर वाइट के टाउन से प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रोग्राम कौन सा है?
2: जिंदगी गुलजार।
0: ओके जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे सुपर वाइट का, कब करेंगे, जल्दी से कर लें।
2: हाँ बिल्कुल, ऐसा सुपर वाइट के कौन है वो इंशाल्लाह आने वाले दिन में इस्तेमाल करना।
0: ओके जी ठीक हो गया, और कुछ कहना चाहेंगे?
2: ये चौन चाहना जी काठरी का गुलाम रसूल मरी अजीज सोलंगी काल कलाशारी अजीज जरवार अजीज सोलंगी का जेके बुधन पर सबने सलाम मोहब्बत जुड़ी सर का गुलाम रही बलोच चार ले लूं।
0: ओके जी थैंक यू सो मच, कॉल हो चुकी है जी ड्रॉप एंड हम करेंगे, हम चलेंगे आगे, ठीक है आगे चलेंगे एंड हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे। द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, काफी दिन बाद ये सॉन्ग मैं प्ले करूंगी एंड उसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। ग्लो विद अस।

song? Okay, जी ये हुसन जो आया है ये हुसन आया है सुपर वाइक के प्रोडक्ट से और सुपर वाइक के प्रोडक्ट ऐसे ही आपके हुसन को और मजीद हसीन बनाता रहेगा अगर आप यूज करते हैं सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स को. और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती की है. ठीक है, तो सुपर वाइट के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं जी वो हम आपको बताएंगे. एंड सुपर वाइट का फॉर्मूला भी आप लोग तैयार कर सकते हैं. और सुपर वाइट का फॉर्मूला कैसे बनता है जी, सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं जी सुपर वाइट राइस एक्नी क्रीम को एंड उसके साथ सुपर वाइट राइस सेरम को, और तीनों को आपस में मिक्स कर लें. तीनों को आपस में मिक्स करने के बाद ना आप लोग इसको स्टोर कर लें. स्टोर करने के बाद इसको रख लें. रखने के बाद रख के छोड़ नहीं देना. आपको रात को सोने से पहले फेस को वॉश करना है सुपर वाइट का राइस फेस वॉश. उससे फेस को वॉश करेंगे एंड देन फिर क्रीम को अप्लाई करेंगे. और जब अप्लाई करेंगे ना आपको बड़े खूबसूरत रिजल्ट मिलेंगे. इसी बात पर मैं आपको एक और गाना सुनाने जा रही हूँ. गाने को सुनेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी मजीद आप इसे और क्या क्या तैयार कर सकते हैं.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे आई चामरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन्हें सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
5: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
7: मुझे दुकान जी बे डरंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301-399-2836
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0301-386-5453
9: 619 1555 724
10: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

Aukish, welcome back once again. आ गए हम और इसके अलावा जिंदगी के गुलजार है sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इतने खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स, इतने ज्यादा खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स के पहले कभी इतनी ज्यादा खूबसूरती आपने कभी इंजॉय नहीं की होगी अपनी लाइफ में. खूबसूरती भी एक ऐसी चीज है जो कि इंजॉय की जाती है. या खूबसूरती का ताल्लुक मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भी होता है. और कोई कितना ही आपको क्यों ना कह ले कि खूबसूरती मैटर नहीं करती, दिल अच्छा होना चाहिए. अगर कोई ये बंदा बोलता है ना बात, वो झूठ बोलता है, ठीक है. तो उस पे आपने यकीन नहीं करना. खूबसूरती खूबसूरती होती है, ठीक है. तो खूबसूरती को मजीद और खूबसूरत कैसे बनाएंगे, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करके. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी क्रीम, फेस वॉशेस की इतनी ज्यादा जबरदस्त रेंज जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया. अच्छा, इनके सोप्स भी आते हैं बाय द वे. सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है. आप इससे फेस को वॉश करने के साथ साथ आप इससे हैंड्स एंड फीट्स को भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है. और आप इसके साथ फ्रेश भी हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो सर से लेके पांव तक खूबसूरती आपका मुकद्दर बन जाएगी अगर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है. ऑन द वेरी सीरियस नोट, अच्छा इसके अलावा जो इनका बूस्टर आता है सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर, इसको आप सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. आप इसको सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. आप इसको सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा सुपर वाइट टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. इसको सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी कोरियन फॉर्मूला ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं. मकसद ये कहने का कि आप सुपर वाइट का कोई भी मतलब इसकी कोई भी ब्यूटी क्रीम आप यूज कर रहे हो, आप इसका कोई भी बूस्टर उसकी क्रीम में मिक्स करके ऐड कर सकते हैं. आपको जिस तरह रिजल्ट चाहिए, लाइक अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो आप फिर या तो स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे सुपर वाइट वालों की, या फिर सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी सोप नहीं सॉरी ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे और उसमें फिर बूस्टर को ऐड कर लेंगे, ठीक है. तो फिर ये है कि कोरियन ग्लास स्किन आपको मिल जाएगी. इस तरीके से आप इस बूस्टर को यूज कर सकते हैं अपनी क्रीम्स में ऐड करने के बाद. अगर आप ऑयल फ्री स्किन चाहते हैं, सुपर वाइट ऑयल फ्री स्किन के अंदर मिक्स कर सकते हैं इसको सुपर वाइट ब्यूटी सीरम को या फिर सुपर वाइट राइस ब्यूटी सीरम को. इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट जब आपको मिलेंगे तो जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, आप कहेंगे वाकई जो मैं कुछ बता रही हूँ उससे कई ज्यादा हकीकत में इसके रिजल्ट्स हैं. बहुत खूबसूरत. कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे, कॉल कीजिए 03000113488.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ हम चलते हैं जी आगे 03000113488 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ साथ वो तमाम तो लोग जो कि डेली बेसिस पर कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं करेंगे, जिन लोगों ने कभी कभार कॉल मिलाई हो वो कॉल कर लेंगे, ठीक है, तो ये करेंगे आप सब. एंड गाना हम नेक्स्ट प्ले करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट गाना भी हमने प्ले कर दिया है, बाय अब्रारुल हक.
1: हाय रूप तेरे दे जो नजारे,
0: साथ साथ कमेंट्स को एंटरटेन करते हैं जी. अच्छा, हमें कमेंट किया है फरवा गुल ने. फरवा गुल लिखती है कि शो बड़ा जबरदस्त सुपर डुपर है, ब्यूटीफुल है. सुपर डुपर क्यों नहीं होगा, सुपर वाइट के तावन से है तो सुपर वाइट के तावन से होने वाला शो सुपर डुपर होगा. अच्छा, फरवा गुल कहती हैं गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे. आप ही आपको न्यू शो में आपको मुबारक.

0: बिजी.
1: कॉलर मौजूद है मेरे साथ लाइन पे. हेलो,
2: सलामुअलैकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? पहली दफा कॉल कर रहे हैं भाई
2: जी?
1: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: ना ना,
1: ओके. केड़ो प्रोग्राम बुधो था?
2: जिंदगी गुर्जा है जो
1: कहंजे तामुन सा
2: यो नौ को समया ग्रीन जो सुंदर भाई.
1: बिल्कुल, यो यो नौ प्रोडक्ट तहां जे लाए असा वठी आया आयूं.
2: वठी आ रहा था ना समझ गए
1: ता तहां नालो त खड़ी दिखा रियो. नौ प्रोडक्ट सुपर वाइट नालो आ. सुपर वाइट कदें यूज कंदो?
2: यो इंशाल्लाह.
1: ओके, जरूर यूज कयो ए यूज करे असा के जरूर बुधायो.
2: ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल.
1: बियो कुछ चवण चाहिंदो?
2: ये समन मीरा जी कान बुधायो तो पियानो न मोकल में कई कदे जा आप जा तहार न मोकल.
1: ओके, जरूर तमा के बुधराइंदा. थैंक यू सो मच. पंजो ख्याल रख जो. अल्लाह हाफिज. आज काफी दिन बाद मैं सिंधी बोल रही हूँ और माशाल्लाह काफी अच्छी बोल रही हूँ. अच्छा हाँ, मैं सोच रही थी कि मैंने एक गाना प्ले नहीं किया, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम ये गाना प्ले करेंगे शो में. एंड द सॉन्ग कॉल्ड पैब्लो.

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: हेलो मैं चल नेक्स्ट लाइन पे मौजूद होंगे। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? अयाज अली भुट्टो भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन सा है?
2: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम।
1: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम कब यूज कर रहे हैं? ओके जरूर करें, बस सुपर वाइट होना चाहिए। अच्छा और कुछ कहेंगे? राशिद भुट्टो, अच्छा सलाम दे रहे हैं। ओके ओके ओके खत्म हो गए। ओके ओके जी, ये एक एक मिनट का गैप लेके ना दोस्तों को शामिल करने से बेहतर है जल्दी जल्दी बोला गया। वैसे ये सलाम दुआ देने का जो ये ट्रेंड है ना, ये काफी पुराना हो चुका है, तो कोशिश किया करें कि कुछ प्रोडक्टिव बात किया करें, ठीक है? बहुत कम लोगों को कॉल पे आने का मौका मिलता है, तो इस मीडियम पे आके इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया करें, कोई अच्छी प्रोडक्टिव बात किया करें, ठीक है? जो कभी किसी ने ना की हो। और इसके अलावा जी आगे चलते हैं, कमेंट्स और मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, और कमेंट्स और मैसेजेस और साथ में हम फिर से गाना चेंज करने का सोचेंगे नहीं बल्कि करेंगे, एंड हम गाना प्ले करेंगे। मेरे ख्याल से लास्ट में हम एक ही गाना प्ले कर सकते हैं, और मेरे जाने का वक्त भी जो है ना करीब आ रहा है।

0: जी दुकान ते फायरिंग पंज जणा कतल मारजी वेलन में पी ए संदस ब पुट शामिल आहिन। फोतिन में रजब घांगरो, संदस ब पुट रियाज ए कुर्बान घांगरो शामिल आहिन। बिलावल घांगरो ए वाटेड़ो अब्दुल्ला बिरोही भी गोलिन जो खाज बणजी विया आहिन। पुलिस जो चवण आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरिन सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जे मारजी वेल चइनि जणनि जो तालुक रतो देरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे। मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारिजी दहशतगर्दनि जे ताक़नि खे वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकेल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु शुरू थींदो। ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि। पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतकिले जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो। हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुलतवी या ख़तम करण जो मुतालबो कयो। अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई। ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जिमनी होसिन खां लातालुकी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर होसिन ते हमला करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परडेही मीडिया मूजिबि ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राबची होसिन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालुकी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न विञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk। वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरियंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो
1: आशिक होंडा शोरूम मेहराबपुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहराबपुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहराबपुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: सर्जरी चांडका मेडिकल कॉलेज,
4: इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1565-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
6: 0331-305-3749 याद रखना डॉक्टर साहब। हर देखो VIP रोड मेहड़।
9: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी नाच जो कि आपने यहाँ पर सुनी, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चे होते हैं जनाब, थोड़े से तो आपके खर्चे कराए ना, ऐसे कैसे चलेगा। अगर आप भी थोड़े से खर्चे करना चाहते हैं, और खर्चे भी वो वाले बाबा चवना है ना, वो खर्चे कहो जेको सजायो वने छो, त कई मरतबा ईअं थींदो आहे असां खोड़ सारा अहिड़ा ख़र्च करे वेंदा आहियूं जेके अजाया थी वेंदा आहिनि। ऐं जॾहिं ब्यूटी प्रोडक्ट जी ॻाल्हि ईंदी आहे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खोड़ सारा प्रोडक्ट अहिड़ा असां इस्तेमालु करणु स्टार्ट कंदा आहियूं जेके भई नालो त वॾो हूंदो आहे पर दर्शन छोटा हूंदा आहिनि, ॿुधो अथव न। सो बिल्कुलु वेसी, अगरि तव्हां बि कोई अहिड़ो प्रोडक्ट यूस करे रहिया आहियो त तव्हांखे रिज़ल्ट सफ़ा ज़ीरो मिली रहियो आहे, उल्टो तव्हांजे चहिरे जी स्किन ख़राब थी वई आहे, त तव्हांखे छा करणो आहे, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करणो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांखे बिल्कुलु भरपूर पूरे प्रोग्राम में ॿुधायो वेंदो। ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तव्हां कीअं किथां परचेस करे सघो था, या वरी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था, इहो बि बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधायो वेंदो। पर अॼु जे प्रोग्राम जो टॉपिक छा आहे, इहो सभ खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधायूं। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम में जो सवाल होने वाला है वो जरा गौर से सुनिएगा, ऐसा ना फिर बोलेंगे भाई हमने तो सुना ही नहीं, समझ ही नहीं आया सवाल। सवाल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और इस तरह के आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं मगर उसको 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। हाँ जी, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन फिर भी उसको 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते। हाँ जी, ये क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। अगर आप हमारे पेज पर आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल।

0: मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, जहां जहां तक हमारी आवाज धक्के खा रही है, सब लोग मुझे बताएं कि कहां कहां से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हो, जरा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मुझे बताइए कि वो क्या चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन 20 लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा पाते। हां जी भाई साहब, और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। अगर आप भी चाहते कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के लिए आपको जो नंबर बताऊंगी ना, उनके ऊपर आपने बस रब्ता करना होता है। नंबर्स के ऊपर राता कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो जाए। या फिर ऐसा वाला सीन है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिलती है लेकिन डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो वो भी आप अवेलेबल करा सकते हैं। बस नंबर्स के ऊपर राता कीजिए। और नंबर सुनने वाले हैं जनाब 0332738439। बड़ी 3032 है 7384309। योर नंबर आ 3132508 3052 259 07। डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाज़िर बाबा, अवेलेबल कराए छू था तो न तुम एरिया में ना ही अवेलेबल थी तो बाबा बुधायो नी बुधाईंदा ना, तो खबर क्यों पड़ी तो तुम्हारे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अना को मिले थी, मिले रही तो जाहिर सी गल इस्तेमाल भी न करना हूँ। सो इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइंदा रहो। अच्छा किंजा यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। आप अपनी अम्मी के साथ मिलकर हमारा प्रोग्राम सुनती हैं, बहुत शुक्रिया। अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून। सिद्रा मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा अली रना भाई कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम हो गया। फरवा गुल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, ब्लेस यू विद बेस्ट विशेस, टेक केयर। आप ही अभी आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत ठीक है जी, आप बताएं आप कैसी हैं। कहती हैं कि आप ही अर्ज किया है, रेजा रेजा ही ख्वाब मेरी आंखों में, कैसे कह दूं कि गम नहीं होता, कोई शिकवा नहीं मगर मोला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। अल्लाह सही तांजो दर्द घट करे छड़ी दो बाबा, अल्लाह खान दुआ घुरो। और फकीर शाह शेख हमारे साथ मौजूद है जी, लाड़काना से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जैन अली लिखते हैं कि खूबसूरत है चांद भी मगर वो जमीन जादी अलग ही मयार रखती है, फॉर यू सिडो, थैंक यू वेरी मच जैन। और लिखते हैं कि कोई मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले, आए हाय। और आपका डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा यहाँ पर हमारे साथ फरवा की दी, यहाँ पे गाना बिल्कुल आपके लिए लगाते हैं। और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, गुड आफ्टरनून मैम आरजे, नाइस होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम हो गया। नजीर खोसू भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी आपका भी। और किंजा ने क्या लिखा है, गाने की फरमाइश करती हूँ, गाना आपका लगाते हैं किंजा। नजीर खोसू भाई हमें सुन रहे हैं, बलूचिस्तान से आपने मुझे ज्वाइन किया, लिखने की कभी कभी सुकून चीजें हासिल करने में नहीं उनसे दिल हटा लेने में होता है, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे अमानत समझो, मिल्कियत नहीं। दिल जब मेरा से निकलकर अल्लाह का आ जाए, अल्लाह पर आ जाए, तब दस्त बर्दारी भी सुकून बन जाती है। ओके जी ओके। अलीशा क्वीन हमारे साथ है, अलीशा लिखती हैं कि उसकी आंखें बला की ताजर हैं, जिसको देखें खरीद लेती हैं। हाँ बाबा हाँ था सही था जो। अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि हेलो हाय, खाना खाकर जाना, आज भला बिरयानी जो आसरो आए लगे तो। चलो ठीक है, तांजे आसरे में हूँ था। तारिक भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई जान। और चाचा खालिद हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चाचा, मैं ठीक है, ता कहते हैं खर्च, हाँ खर्च कयो बाबा, सजायो खर्च कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम उहा प्रोडक्ट आए जेका तव्हां जा सब थक लाए छॾींदी, तव्हां जी खूबसूरती खे एॾो बहितर तरीके सां निखारींदी, तव्हां पाण चवंदा बाबा असां पहिरियां सिदरा जी ॻाल्हि छो न मञूं पिया। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां जे लाइ जेको आहे न तमामु मुनासिब क़ीमतनि में मिली रही आहे, त एॾो ख़र्च कोन तव्हांजो थींदो। दिलि जाइ कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा रहो। हिते टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदसि, तव्हां गाॾी न वञो, हिते वेठा हुजो। ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटा थी, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, ॿुधंदा रहो ऐं टॉपिक खे फॉलो कयो, मोटी अचां थी, हिते वेठा हुजो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
3: मेहराबपुर भरपासे की अवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल के खर्च मां जान छो रोज के खर्च का बचो A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करो स्पेयर पार्ट्स माहिर मकेनिक की सहूलत पिण मौजूद है उन सा गड सिंध शादी हॉल से गडो गड A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिन राबते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 AM to 5 PM तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851
3: अवां जी स्किन डल बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 0300-338-5569
5: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइक था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चामरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ बातें होती हैं जनाब। और क्यों ना हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और फायदेमंद मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि भाई मार्केट में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लगा कर देखे हैं, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो ये फायदा तो आप लोगों को मिलने वाला है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे पर जो खूबसूरती आपको देने वाली है, आपके चेहरे पर जो खूबसूरती आने वाली है, लाने वाली है, वो हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रखने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे या फिर हम कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, भाई आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि भाई आपकी जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ना, वो आपसे कहीं गायब हो जाते, दूर हो जाते, उल्टा आपकी जो स्किन है वो खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो कोई भी आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहेगी और आप हमेशा खूबसूरत बने रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप जाते हैं परचेज करने तो आप इजीली जाइए, परचेज कीजिए। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको नंबर जो बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता जरूर किया करें, ताकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा सके। उनके अलावा अगर तुम्हें चाहिए था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा इस्तेमाल करना चाहूँ था, पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कड़ा फायदा है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा फायदा अगर माते गणन वेहान है तो बाबा रात थी वेंदी, पर चलो थोड़ा घना ताके बुदाई सडंदी चाहे याद करना। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीजें जो है ना, बेसिक सी मालूमात आप लोगों को मैं बता रही हूं। अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना, सबसे पहली बात आप लोगों को जो बताने वाली वो ये कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। यानी कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये फलां प्रोडक्ट लगाने से कहीं हमारी स्किन तो खराब नहीं हो सकती। नहीं हो सकती बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड वाइटनिंग फार्मूला है। मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना, वो ऐसा होता है कि भाई उसे डॉक्टर्स ने बनाया होता है। तो ये घबराने वाली बात तो जरा साइड पर रख दीजिए कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम नहीं लगा पाते हैं। आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है। और बात आती है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर क्या चीजें ऐड की गई हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आरबुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। और जैसे हम आप लोगों के साथ जिक्र करते हैं भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, तो ये चीज भी आप जरा याद रखा करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को फेशियल जैसा रिजल्ट मिलता है। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। ये नाइट क्रीम तो है ही है, वाइटनिंग फार्मूला तो है ही है, लेकिन ये एक फेशियल वाला इफेक्ट आपके चेहरे पर लाने वाला प्रोडक्ट भी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस्तेमाल करेंगे तो इसे वाकई फेशियल वाला रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल आपको फेशियल वाला रिजल्ट आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है ना, बिल्कुल यही चीजें आपके चेहरे पर जो है ना वो फेशियल वाला इफेक्ट लाने वाली है। क्योंकि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ये महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर ऐड की जाती है। तो भाई आप भी लकी हैं कि आपके पास कोई ऐसा फाइनली प्रोडक्ट मौजूद है जो आपकी खूबसूरती के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और साथ ही साथ आपको इस तरह के रिजल्ट्स देने वाला है जो कि आप कहीं शायद किसी और प्रोडक्ट से हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घरों में शादियां हो रही हैं या फिर आपकी अपनी शादी हो रही है, तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको परफेक्ट वाला रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। 2-in-1 फार्मूला, मेडिकेटेड फार्मूला, भाई और क्या चाहिए आप लोगों को, ना शुक्रो। इतना अच्छा, इतना कमाल का प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है। और खूबसूरती तो हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ क्रीमें लगा रहे होते हैं। क्रीमें लगाना इनफ नहीं होता, आप लोगों को चाहिए कि आप जो है ना अच्छा सा फेस वॉश भी लगाएं अपने चेहरे के ऊपर। अगर आपके पास डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है तब तो भाई क्या ही बात बन जाएगी, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आपको आराम से मिल जाता है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। क्योंकि
बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कामों की वजह से प्रॉपर अपना और अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, आप काम में इतने मसरूफ हैं, तो बस आप डी स्किन का फेस वॉश अप्लाई कर लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर लीजिए। ये दोनों चीजें इनफ है भाई आपकी ब्यूटी केयर में इजाफा लाने के लिए, आपकी खूबसूरती को। और जब आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज करते रहेंगे ना, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा और कितना जबरदस्त प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी बात है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना और डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इतने जबरदस्त, इतने कमाल के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है, तो मैं तो चाहूंगी कि भाई जल्दी से जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से और परचेज कराइए, और इसी के साथ साथ खूबसूरत होते जाइए, क्योंकि खूबसूरती के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब, तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोग हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। आज भला मुझे आप लोगों की रश कम क्यों नजर आ रही है, जल्दी जल्दी से प्रोग्राम पर जो है ना वो हल्ला बोलिए और जरा। हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। जब आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं ना, तो ये फायदा हो जाता है कि भाई हमारी पोस्ट बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा लोगों को हम इजीली बता पाते हैं कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठाइए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। उनके अलावा हमारे पास ही आप लोगों के मैसेजेस हैं, तो यहाँ पर चाचा खालिद कहते हैं, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही सही। ये क्या था चाचा, चलिए आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। और हमारे साथ फहीम भाई मौजूद कहते हैं, तू आर थी अचे थी अई पार थी बने थी, तू आर थी अचे थी अई पार थी बने थी, तू वहां ते किरे थी अई बार थी बने थी। फहीम शेख लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम याली मदद, अदा केड़ा हाल है न सफा बल्ली, टॉपिक जो जवाब दिनो आहे ओके। अच्छा अलीशा लिखती है कि जिंदगी ये है कि तुम सामने रहो ताकि मैं जो ताकि मैं जी सकूं। अच्छा सही सही सही सही सही, हाँ भाई पसंदीदा इंसान की बात ही कुछ और होती है। और चाचा कहते हैं कि क्यों धिक्के खा रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज ही तो है जो सहर तारी करती है बेटा सिड्डू, अल्लाह जाए बुदा मनवा दिल जाए कया ना। और किशोर भाई आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, क्या बात है जी, बढ़िया हो गया। और उनका अलावा फहीम भाई कहते हैं, अदा आज लगे तो अवां के जुकाम आए, हाँ थोड़ा थोड़ा मुखे भी महसूस थे तो ये आवाज थोड़ी अजीब आए मुझे, पर कोई बात नहीं है जी, आप गुजारा कर लीजिएगा। और ये फर्ज मोहम्मद, फर्ज राहिब अली खोसू भाई हमारे साथ है, फर्ज राहिब अली खोसू भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं, अदा हिकड़ो सॉन्ग आहे पितकड़ो गानो, बिल्कुल तांजी फरमाइश ते हलायो वेंदो, आई तव्हां पंहिंजी सीट ते वेठा हुजो जो। फरवा कहते हैं कि आपे डीपी देख कर भी नहीं समझे कोई, अच्छा ओके जी ओके। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी दोनों आंखें खोलकर बैठना पड़ेगा चले दोनों आंखें खोलकर बैठते हैं। अबू हनीफ अल बलूची हमें सुन रहे हैं कि कहते हैं कि लोगों ने मांगा रोज खुदा से कुछ नया, एक हम तुझे एक हम थे कि तेरे ख्याल से आगे ना जा सके, आंसर है आपने दिया है जवाब जी ओके हो गया। और फरवा आपने भी टॉपिक का जवाब दे दिया, ये भी ठीक है जी। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, विलेट सोनो खान लाशारी मिरपुर खास से कहते बाजी सिदरा टॉपिक पानी, ओके ओके ओके आगे नहीं पढ़ेंगे वरना लोग जान जाएंगे कि आज के सवाल का जवाब क्या है। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है, तो सवाल ये पूछा है कि आप मुझे बताएंगे वो क्या चीज है जिसका कोई वजन तो नहीं लेकिन फिर भी उसे 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे ये जरा इस सवाल का जवाब बताइए। मैं आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ, बड़ा ही अच्छा जबरदस्त सा गाना है, गाना सुनते और गाना सुनते सुनते आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे और आप लोगों को बताएंगे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो कि आप इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, बताइए ना मुझे। और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे ही नहीं, ये भी बताइए ना मुझे।

हाँ जी, इतना भी रूठना सही नहीं होता। वैसे ये चीज मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि औरत जो होती ना, वो मतलब ऐसा होता है कि बार बार रूठ जाती है, और इस वजह से रूठ जाती है कि अगला इंसान मुझे मनाएगा, लेकिन जब वो रूठती है ना तो वो अपनी अहमियत खो देती है। क्योंकि इस तरह की जो औरतें होती ना, वो जो बात बात पर रूठ जाती हैं और ज्यादा रूठ जाती हैं, वो अपनी अहमियत ही खो देती हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाए तो भाई, ऐसा इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता जो बात बात पर रूठ जाए। तो ज्यादा रूठना, चाहे औरत हो या मर्द हो, किसी पर भी सूट नहीं करता। तो मत रूठा करी और खास करके भाई अपने पसंदीदा इंसान से। हाय, ओके जी, इसी बात पर एक और बात भी याद आ गई कि भाई मुझे ये लगता है कि इंसान के किरदार की बस सिर्फ दो ही मंजिलें होती है, या तो वो दिल में उतर जाता है या तो वो दिल से उतर जाता है। मुझे और चीजों के बारे में पता ही नहीं। या तो एक इंसान दिल में उतर सकता है या तो फिर दिल से उतर सकता है। आप बताएं, आपको क्या लगता है?

हां जी, भले रुसे भले रुसे, रुसण वारा मानू वैसे भी थोड़ा घट वणंदा है। वासु भाई कहते हैं कि मुझे प्यारी अदी सलाम, वालेकुम अस्सलाम, लेडी सलाम, मदद केड़ा हाल है, सब खुश आवे, सब मजे में, ता पांजा हाल हवाल दियो। और तारिक भाई लिखते हैं कि सजाद अली रुस्तमानी मादली से, अच्छे कस्टमर ही हमारे डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हैं। क्या बात है भाई, सजाद अली रुस्तमानी भाई मादली से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम इन, खुश आमदीद कहते हैं जनाब। ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए और यकीनन आपको अंदाजा हो चुका होगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल है वो क्या ही कमाल का है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास अब ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जिसके इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर जितने मसाले हैं वो सारे दूर हो जाते हैं, आपको मिलती है खूबसूरती, आप हो जाते हैं हसीन, और लोग आपसे पूछते हैं बताएं तो ये क्या कमाल है कि आप इतनी खूबसूरत होते जा रहे हैं, दिन ब दिन आप जवान दिखते जा रहे हैं, आपके चेहरे के रिंकल्स, फ्रेकल्स, क्रेकल्स, ये सब चीजें खत्म होती जा रही है। तो आप उन्हें बताइए का जनाब कि ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। अगर आप नहीं बता रहे तो उन्हें हमारे प्रोग्राम का एड्रेस बता दीजिए वो हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाए रहे हैं या फिर नहीं मुझे बताइए। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो भी अब अवेलेबल हो चुका है, तो अगर आपके एरिया में रहता है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, नंबर्स के ऊपर रब्ता करते रहिए और परचेज करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी अली रजा लगारी भाई, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप, शो तमाम नाइस है, सॉन्ग कल शाम धारे मां दिसां थी, तमां जा गाना मुखे मिली वया या लिस्ट में बची वई जगह तमां जे लाए बिल्कुल हलाए वठना से। आई क्या कहते हैं कि डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आसिम लगारी, अनवर लगारी, अब्बास लगारी, मजहर लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, अल्लाह बचायो मकसूद अली लगारी। ओके जी, सब भाइयों को वेलकम हो गया। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं गुड आफ्टरनून बुआ जी, हम भी आए हुए हैं इस प्यारी सी महफिल में आपकी स्वीट सी वॉइस से लुत्फ अंदोज होने के लिए। अच्छा, मेरे को लगा पता नहीं क्या लिखा है वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को। वासु भाई कहते हैं दी सिडो प्रोग्राम जबरदस्त चलता पाए, थैंक यू प्यारा भा। परवा कहती है कि आप ही, हाँ हाँ मुझे पता चल गया,

क्या बात है जी, जरा आ राहों में मेरी, उसको बताना चाहता होगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी लगा लीजिए। और चाचा कहते हैं कि हाइलोरोनिक क्या है, हाइलोरोनिक एसिड सीरम है, एक सीरम होता है, और जैसे सीरम्स आपकी स्किन के लिए जरूरी होते हैं ना, जैसे विटामिंस के सीरम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक हाइलोरोनिक एसिड सीरम है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इफेक्टिव है, तो वो आपके लिए हमने डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश के अंदर एड कर लिया है। आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और है भी, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हसरात खवातीन, तो आप ट्राई करके देखिएगा। और फरवा आपकी पसंद का गाना लगाते हैं जी, आप हमारे साथ जरा बनी रहिए। और मोहम्मद जमान भाई कहते अच्छा हुआ रश कम है, आज हम गरीबों की पसंद भी चलेगी, गाना तो बताएं कौन सा सुनना चाहते हैं। वासु भाई कहते अदी से डो सुभाने मुझे कबूतरन जी कबूतर आइन भाई भाई शो कर जी भूंदा है, एंजॉय कयो पांजी जिंदगी के। और फलक अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, लिखा है खामोश लबों पर भी मोहब्बत का असर है, आंखों में छुपा एक हसीन ख्वाबे सहर है, न चांद की ख्वाहिश न सितारों की तमन्ना, बस एक तेरा साथ हो और कुछ भी ना मांगो। कुछ लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं कि बिछड़ भी जाएं तो उम्र भर याद आते हैं, हमने तो मुस्कुराकर हर दर्द छुपा लिया, लोग समझते रहे कि हमें कुछ हुआ ही नहीं, तेरी यादों की खुशबू से महकता है दिल, तो दूर है मगर फिर भी धड़कता है दिल, कभी फुर्सत मिले तो हमें भी याद कर लेना, हम आज भी तुम्हारे इंतजार में हैं। ओके जी, ये तो बढ़िया हो गया। और मुझे बताएं जी, स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया नहीं। अलीशा कहती है कि अच्छा अलीशा आपने गाना लिखा है, कहते डेडिकेट माय ब्रदर सदाम हुसैन चांदियो। ओके अलीशा। मधोश भाई लिखते हैं कि अदी ही गानो हलायो खिली अदमा दिसां थी मिलियो गानो तो हलाए बैठू था। किशोर भाई कहते हैं कि अदा हाण चवण इयो तवां जो कमेंट मुखे समझ में ना आयो अदा, एक्सप्लेन अस प्लीज। अच्छा फहीम भाई कहते अदा असां जो गानो प्ले तवां जो गानो थर्सडे जे प्रोग्राम जे लास्ट लिंक में हलायो सी तां बुद्धि वर जो ठीका। और गुल यासी नाज़म सुन रहे हैं, आप को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दिल इतना भी पागल नहीं होता जितना आप लोगों ने बनाया हुआ है, समझा हुआ है दिल को। दिल तो बेचारा ऐसे ही सोचता होगा कि मेरा काम तो सिर्फ खून पहुंचाना है, लेकिन ये लोग मुझसे कैसे कैसे काम करवा रहे अगर दिल अपना असली काम छोड़कर आपके बताए हुए कामों पर चले तो सोच लीजिए कितनी फसाद हो जाए। बेचारे दिल का जो काम है उसे बस अपना काम करने दिया करें, उसे रिलैक्स रखा करें, सुकून में रखें, ताकि आपकी बॉडी पर खून जो है ना वो सही तरीके से पहुंचता रहे। और बेचारे दिल को ज्यादा तंग मत किया करें। और यहाँ पर टाइम हुआ है जी, जरा हम न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाते हैं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
3: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु थींदो. ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि. पीटीआई वानी जे इस्पताल मुंतकिली जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो. हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुलतवी या ख़त्म करण जो मुतालबो कयो. अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई. ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ यमनी हुसैन खां लातालुकी ज़ाहिर करे छॾी. ईरानी परडे॒ही वज़ीर हुसैन ते हमला करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी. परडे॒ही मीडिया मूजिबि ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकजी हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालुकी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream. मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में.
3: अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन. जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो. हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे. तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो. सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था. असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल. ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो. ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk. वधीक ॼाण लाइ 03042827274. ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं. एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर. अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणज पहिरियों कदम वधायो.
6: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
7: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि.
6: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी.
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000.
1: खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है. गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार. फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर. नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है. आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं. पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. 03003385569.
8: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
9: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
9: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
8: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है.
10: सुपर वाइट.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे बि मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेरा पर मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन फेस वॉश है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप जाइए और परचेज कीजिए, क्योंकि जब तक आप परचेज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब प्रोडक्ट्स कितने कमाल के हैं। अगर आप भी परचेज करने वाले हैं तो जल्दी से परचेज कीजिए, इस्तेमाल करते रहिए और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं। जिन जिन लोगों ने अभी अभी हमें सुनना स्टार्ट किया है तो उनको भी वेलकम कहते हैं। सब सुनने वाले समातों को वेलकम इन खुशामदीद। बिल्कुल, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि वो क्या चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन फिर भी उसे 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते। और इस सवाल का जवाब दीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए 888 पर, और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। इससे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, बहुत सारे लोग ये जानेंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल है वो आपकी स्किन के लिए कितना और क्यों जरूरी है। ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप हमेशा याद रखा करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना जनाब, ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। जो आपकी स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने मिलकर तैयार किया है। तो अगर आप भी कोई ऐसा लाइट वेट सा फार्मूला लगाना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी हार्श से केमिकल एड ना हो, बस नॉर्मल सा फार्मूला हो और मेडिकेटेड फार्मूला हो, ये तो भाई बहुत जबरदस्त बात हो जाती है। और कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको रिजल्ट भी दे जनाब, बड़ी कमाल के शानदार। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप यूज करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट जो मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। बिल्कुल जी, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ 2 रातों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे वाले रिजल्ट जो है ना वो मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है, साथ साथ ये 2-in-1 फार्मूला है। और पूरे पाकिस्तान में जब आप देखते हैं ना कि भाई इतनी सारी क्रीमें मिल रही होती हैं, जो इतनी सारी क्रीमें होती ना उनमें सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स का जो ना वो किया गया है, डाला गया है। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं क्रीमों में से एक है कि भाई इतना प्रीमियम फार्मूला आप लोगों के लिए तैयार हुआ है, तो इससे भरपूर फायदा उठाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। क्योंकि जनाब खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में शामिल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा। आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह से मॉइस्चराइज है ना, वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी शख्सियत में ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन को बनाइए ज्यादा खूबसूरत, आसान, और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। क्योंकि जब भी आप स्किन के करने लग जाते हैं ना, तो भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो अपने चेहरे पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आपके पास एक तो टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, या फिर अगर आप अपने कामों में इतना मसरूफ है, आजकल के दौर में तो भाई वैसे ही लोग बहुत ज्यादा मसरूफ है, उनसे पूछे आपको क्या काम है तो वो बेशक 3-3 घंटे रील्स देख सकते हैं, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो इस भाग दौड़ती दुनिया में अगर आप भी अपने चेहरे को ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ख्याल रखने के साथ साथ चेहरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बस इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अंदर फेशियल की क्वालिटीज भी हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई करना हो जो कि सिर्फ और 2 रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट दे दे, तो भाई आप लाजमी ट्राई करके देखिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओके जी, साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसे भी आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और डी स्किन का फेस वॉश ये तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं।
क्योंकि जब बहुत से लोग आकर मुझे ये कहते ना कि बाजी असा क्रीमू ना आयू वणंदा त बाबा तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था शत डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूलो आहे इने के डॉक्टर्स ठायो आहे त तमा दिल खोले करे अखियो बूटे करे लगाए सगो था आई डी स्किन जो को फेस वॉश आहे न इहो तमा हर उमर में भी लगाए सगो था आई तमा जे घर जो एक एक फर्द लगाए सगे तो आई डी स्किन जो को फेस वॉश आ न इहो तमा जी स्किन की हमेशा हाइड्रेट रखंदो आहे मॉइस्चराइज रखंदो आहे आई तमा जी स्किन ते जेका ये गंद अची वेंदी आ जमा थी वेंदी आ या पोल्यूशन जमा थी वेंदी आ तमा बाहर साइड ते कोई वर्क कंदा आयो जेदी वजह से तमा पांजी चेहरे के घड़ी घड़ी वॉश न करे सकंदा आयो या वरी तमा एक दफो टाइम ते वॉश करे सगो था त तमा डी स्किन फेस वॉश सा पांजो चेहरो अगर वॉश कंदा त तमा जी स्किन जे अंदर ताजगी अची वेंदी तमा जी स्किन ते निखार अची वेंदो आई तमा महसूस कंदा त वाकई तमा कुछ सुठो इस्तेमाल कयो आहे आई डी स्किन जो को फेस वॉश न के तमा 3 खां 4 मरतबा अप्लाई करे सगो था सुबह जो लगायो मंजन जो लगायो आई रात जो लगायो रात जो तो लाजमी लगाए जो रात जो फेस वॉश करे आई पोए तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के जदे अप्लाई करना ना पो तसाई वाह वाह थी वेंदी छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे ही ॿई चीज़ूं तव्हांजे खूबसूरती में चार चंड लॻाइण वारियूं आहिनि सो तव्हां बि ट्राए करे सघो था हर स्किन जे हिसाब सां तयारु थियल आहिनि अगरि तव्हांजी स्किन सेंसिटिव बि आहे कोई बि हिन महिल ताईं प्रोडक्ट अगरि तव्हांजी स्किन ते सूट नाहे करे सघियो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम ज़िंदाबाद जियो करे और जनाब अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए तो उसका भी हल आपको बता रही हूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं आप बस नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए जो नंबर्स आपको प्रोग्राम के अंदर बता रही हूँ पहला नंबर ये जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50 25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे

स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आहे त मूंखे ॿुधायो जल्दी जल्दी जी असांखे ख़बर पई त बाबा तव्हां बि इस्तेमाल कई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं तव्हां बि यकीन सुहिणा थी विया हूंदा। अच्छा दी तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि त मैसेज तरफ़ अचूं था, पैनल जी तरफ़ अचूं था त पैनल ते तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि उन्हनि खे सभ खां पहिरीं पढ़ी वठूं। सभ खां पहिरियों जेको मूंखे मैसेज मिलियो आहे उहो मिलियो आहे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम अनवर अली बलोच फ्राम सोनाड़ी फ्राम अच्छा वो है जनाब आपने टॉपिक का जवाब दिया है। अच्छा वो कैसे हो सकता है भाई बताएं मुझे जरा। और मकसूद मलाह हमारे साथ मेहरापुर से कहते हैं कि हेलो सिदरा मुस्कान, आपका शो बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक, आई लाइक योर शो। मुझे निगत नाज का गाना सुनाए। हाजिर हाजिर, हिन गाने का पो निगत नाज जो गानो हलंदो। और चाचा खालिद हमारे साथ तमाम गाने की फरमाइश कई। ओके चाचा गोठ नबीदाद बम्बरो नारो खां इमाम रिनो बम्बरो भाई हमारे साथ भाजू मोहब्बत तू आए तुम असाजे प्रोग्राम में शामिल आयो। और ये बकर अली हमारे साथ हैं, बकर अली फ्रॉम केची केची उन्नड़। सलाम सिदरा जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप ही आप कैसी हो। आज के टॉपिक का जवाब है दुख और दर्द। हाय अल्लाह, अच्छा हे भी माना गाने जी कट थे या मां सोचा पे ये पांजो तसलाई जा तरकिया बाबा। ओके बकर अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ है पोएट्री अर्ज है गरीबों की है और गरीबों की राय और फर्क लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। फारक अच्छा गरीबों की राय और फारक लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्यों भला नहीं लेनी चाहिए जयपाल भाई आप बताइए मुझे जरा। फारक की तो समझ आती है, गरीबों की क्यों नहीं ये बताइए जरा। और कहते हैं कि भाऊ अर्ज करते हैं लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब किरदार पर बात आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है जयपाल भाई। ओके ओके समझ गए समझ गए। और कहते हैं अर्ज किया है भाऊ उदास मत होना क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर तेरे आसपास हूँ, पलकों को बंद करके जब भी दिल से देखोगे मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जयपाल भाई कराची से मैं सुन रहे हैं, क्या बात है जयपाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। और अब्दुल्ला महर हमारे साथ कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज की है मैंने और मेरी फैमिली ने भी रिजल्ट ब्यूटीफुल मिला है। डेडिकेट आपको सॉन्ग फायजा अली फेवरेट सिंगर। ओके जी फायजा का गाना आपको जरूर डेडिकेट कर देंगे क्योंकि आप और आपकी फैमिली डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है।

भाई यको साल जी त खबर कोन्हे अलाए काथे हुए बाकी हाणे कुझु महीननि खां त असांजे प्रोग्राम में आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में ॿुधे पियो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका इस्तेमाल बि करे पियो ॾियो हाल हवाल ईअं आहे न बिल्कुलु ईअं ई आहे अच्छा ये हमारे साथ ही अब्दुल्ला महर मीरपुर खास के थे डेडिकेट आपको फायजा अली का गाना जी जी भाई आपके लिए फायजा का गाना लगाते हैं और हमारे साथ है एस डी जेपाल हेलो आरजे भाऊ हाउ आर यू खुश रहें थैंक यू आप भी मेरे प्यारे भाई और कहते हैं भाऊ काम में हूँ नेक्स्ट ज्वाइन करूंगा शो एंजॉय ओके और ओके ओके बहुत शुक्रिया भाई जान एरम कहती है कि ओ माय डियर दिलबर दोस्त मुझे लग रहा है कि बस आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप जानती हैं कि मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रही हूँ समझ रही हैं तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और हमारे साथ ही हमारी फजली कहती हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो स्वीटी सलाम टू कायनात और सब सिस्टर्स को मैं लंच कर रही हूँ एंड आपका शो भी सुन रही हूँ लंच करें बिस्मिल्लाह करें जी जी बिस्मिल्लाह करें आप खाएं पिए एंजॉय करें और वाह वाह

0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, मयारूं हलन थियूं मां मयार ॾियां में डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कोन कई अथव तव्हां ते त मयार ठहे बि थी. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा, इस्तेमालु करे तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हांखे रिज़ल्ट कीअं मिलनि पिया. किशोर भाउ कहते की हल हू दौर हो, माण्हू इशारो सम्झी वेंदा हुआ. अरे कहना क्या चाहते हो. अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स ऊपर भी चले गए होंगे, तो जिनके नहीं मैं रीड कर सकूं तो आप जरा ऐसा कीजिएगा कि दोबारा अपना कमेंट पेस्ट कर लीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा. अच्छा, उनका अलावा वहीद वफाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी, क्या हाल है आपके. माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्रॉम जेकब आवाज से आपके साथ हूँ, बहुत शुक्रिया. चाचा खालिद कहते हैं कि मूं साहिर बगा जो गानो हाज सुल्तानला साहिर बगा जो गानो लाइन था पर जेका तव्हां फरमाइश कई ना, उहा एरिया त हुनखे लास्ट में ई लॻायो वञे. सो तव्हांखे थोरो सबर करणो पवंदो. फरवा तव्हां टॉपिक जो जवाबु ॾिनो आहे ओका
1: साल सदिए जे आहे बराबर पंहिंजे सूरन जी माथो सां कयां फेरी कई.
0: हां भाई हां, मुझे तव्हां चवण ते दवा न खाइजो, बस मुझे चवण ते तव्हां प्रोडक्ट जो यूज़ करे सघो था, छो त प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांखे जेका बि डिटेल ॾींदी आहे उहा सफ़ा सही ॾींदी आहे. बाक़ी हा, दवा जेका आहे तव्हां डॉक्टर खां पुछी करे खाईंदा कयो. बाक़ी अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था त पोइ त वाह वाह आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुलु तव्हांजे घर बि जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघूं था, पर जॾहिं तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजो हाल अहिवाल ॿुधायो त किथे किथे नथी मिले, असां कहिड़ी ख़बर त भला किथे किथे अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे. सो तव्हां बि इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां बि ख़ूबसूरत थियो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो. हिते टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं. तव्हां कारी न वञो, हिते वेठा हुजो. ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए.

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you.
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद एंड बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिले आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
4: अरे न खुश्क ऐं बेरोनक जी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
5: न अदा
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
6: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
5: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
7: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 03013992836
9: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94
11: जो सड़न सजे जिस्म पेरन में मकाई यूनिवर्सिटी कराची जो

जिंदगी ए जिंदगी, तेरे फैसले बड़े सख्त ठहरे, जिन्हें अपना समझा वही अजनबी निकले, और जिनसे उम्मीद बांधी वही दिल तोड़ गए। हमने तो हर मोड़ पर तुझे खुश दिली से कबूल किया, मगर तूने हर मोड़ पर हमारे हिस्से में कोई नया दुख और कई नई आजमाइश लिख दी। कभी हालात ने तोड़ा, कभी अपनों ने, और कभी उन यादों ने, जिन्हें हम चाह कर भी अपने दिल से जुदा न कर सके। हम मुस्कुराते रहे ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है, मगर अंदर कहीं एक शख्स रोज थोड़ा थोड़ा टूट पा रहा है, और जिन ख्वाबों को आंखों में सजाया था, वक्त ने उन्हें हकीकत बनने से पहले ही मिट्टी में दफन कर दिया। अब ना किसी से शिकवा है, ना किस्मत से कोई गिला, बस दिल चाहता है कि कुछ लम्हों के लिए ये जिंदगी अपनी तमाम शक्तियों समेत खामोश हो जाए। और ए जिंदगी, अगर यही तेरा दस्तूर रहा तो फिर इतना हौसला भी दे कि हम अपने टूटे हुए वजूद के साथ बाकी सफर तन्हा तय कर सके, क्योंकि किसी और को खोने की, किसी और को छोड़ने की अब हिम्मत नहीं रही।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही मतलब अच्छा सा गाना हमने एंजॉय किया. हमारे पास एक और गाना मौजूद है जो कि होने वाला है जी, मतलब एक अच्छे वाले सिंगर है, तो इनका हम गाना सुनेंगे. इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा.

ओके जी, मोहब्बत न रही आ बाबा, रही छा कजे दुनिया में, रही छा कजे बाकी काडे वेंदो। कोई भी वो प्लान ठाए हुआ जबला। चलो खैर, यहाँ पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

ओके जी, गाना तो अच्छा है, गाना अच्छा है, नो डाउट. और आप ऐसा कीजिए, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा जानिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानेंगे तभी तो आपका दिल करेगा कि भाई हाँ मुझे भी लगानी चाहिए. क्योंकि वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लगाकर देख लिए, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं इतना आखिर क्यों बताती हूँ. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये चीज तो हो ही जाएगी कि भाई आपके चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारे दूर हो जाते हैं. सबसे बेहतरीन बात की डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और ये 2-in-1 फार्मूला है. अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने लगेंगे ना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये फायदा तो आपको देगी कि भाई आपके चेहरे पर जितने भी ये टॉक्सिक से एक्नी आ जाते हैं या फिर ये बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा बुरा असर छोड़ जाते हैं, तो उन तमाम चीजों को भी खत्म कर देगा. और साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको मिलता है परफेक्ट वाला निखार. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना, ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का ना ऐड किया गया है और ये आपको फेशियल का जो है ना वो रिजल्ट देने वाले. तो अगर आप चाहते हैं आपके घरों में कोई शादियां हो रही हैं या फिर आप बाहर जाकर कोई महंगे से फेशियल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप घर बैठे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें, बस ये काफी हो जाएगा. और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही वाकई आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लोग इस्तेमाल करे उनके भाई बड़े अच्छे से हमें पॉजिटिव से रिस्पॉन्स मिलते जा रहे हैं, तो आप कब इस्तेमाल कर रहे हैं जरूर से बताइएगा. उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बाबा यह भी खास गाल है, यह चीज मैं तक बुधाईंदी हल छो तो कुछ मानू वरी सोची ना हूं सिद्रा जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाई थी, तो इन में फेशियल जी क्वालिटीज शामिल आन जी अगर तुम इस्तेमाल करना था तुम्हें फेशियल जो रिजल्ट मिल इस्तेमाल कन तो क्रीम लगाए कर मसाज कर इस्तेमाल कर. अगर तुम इस्तेमाल करण शुरू कर था तो मसाज न कर ही नाइट क्रीम है, बजाय नाइट क्रीम है, पर अंदर जी चीजों थियल उजल्ट फेशियल वो डेणवार. तो जड़ी भी तुम कोई भी नाइट क्रीम जो इस्तेमाल कर तो उनके तुम सिर्फ आराम से पानी उंगलियों की मदद से लगाइंदा रहो ये लगाए तो क्रीम थोड़ी तुम्हारे चेहरे से नजर अचे. छो तो कुछ मानू वरी लगाए छा सफा क्रीम जी ना जज्ब कराइंदा स्किन के अंदर, तो स्किन के अंदर क्रीम जज्ब न करायो वह पान जज्ब थी वी तवी स्किन सफा भला रिजल्ट छे डी. सो अगर तुम ये सब चीजों का अवॉइड कर था मसाज भी कर था स्किन से स्किन के अंदर क्रीम के जज्ब भी करायो था, तो जाहिर गाल रिजल्ट न मिली सकता जो तुम हासिल करना चाहो था. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार से सुकून से लगाया राजे टाइम से लगाया लगाने का पेरा पानो फेस वॉश कर डी स्किन फेस वॉश था उनका पर जदी तुम देसना तो तुम के सफा भला रिजल्ट्स मिली चुका होता. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ है डी स्किन जो फेस वॉश आ है ट्राई करता रहो हमेशा जलाए पांजे खूबसूरत से चेहरे के मजीद खूबसूरत बनाए छियो. उनका अलावा असने प्रोग्राम जी लास्ट लिंक आ है बाबा डाडो भलो असा गानो बुधो सी हिकरो ट्रिक आ है जे जी असा के अलीशा फरमाइश कई है जेको गानो असा बुधो सी उन जी फरमाइश असा के किशोर भाई कई हुई जो उनका पे बुधो सी ना कि चाची की फरमाइश थे. सो अमां जो बिल्कुल फरमाइशू आन लिस्ट फुल थी वही है बाबा हाँ गाना हारजन था सो वधिक को भी गाने की फरमाइश न करे.

बिल्कुल जी, आपके कमेंट्स और मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं। टाइम बहुत थोड़ा जाके बचा है और यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाई कहते हैं दादा सुबाने फेस वॉश वठंदस लाड़काने माँ जी, बिल्कुल तुम फेस वॉश वठजो लाड़काने में तुम्हें आराम से मिली वेंदी। आई अच्छा रमजान भाई हमारे साथ मौजूद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको वेलकम इन खुश आमदीद, कल परसों आपका गाना लगाया तो था। और फरवा कहते हैं ओके ओके फरवा, बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे। और रमजान भाई लिखते हैं कि दिल उदास हो तो बात कर लेना, दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना, हम रहते हैं आपके दिल में, वक्त मिले तो तलाश कर लेना। ओके भा ओके। और कहते हैं प्लीज सॉन्ग प्ले करना भा, हाजिर टाइम बची तो हलाई बैठू था। और ये हमारे साथ हैं अबासी के साथ, अबासी भाई लिखते हैं कि मुस्कान देयर इज मैजिक इन योर स्माइल, व्हेन यू स्माइल माय होल डे बिकम ब्यूटीफुल। ओके ओके। और उनका अलावा अलीशा, हाँ ठीक है अलीशा, तुम पांजो गानो एंजॉय कर।

0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। इरम हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया इरम। अल्लाह साईं तमाम जी जिंदगी में आसानियों आने हैं, अल्लाह करे तमाम खुशियों माने, सही आ। और गोट मोमन तैयब थे बुक हबी बुला थे बुक कहते हैं तमाम जो शो वेरी नाइस आई सलाम तमाम के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा साहिबा, तमाम जो तमाम जा सब प्रोग्राम भला है। अच्छा मुझा तो सब प्रोग्राम भला है, पर तमाम पांजो नालो तो लिखियो को ना, खैर असस अगर मौजूद आयो नालो पांजो लिखना कयो। अब्दुल सतार बमरू भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल सतार भाई लिखते हैं जबरदस्त प्रोग्राम जबरदस्त आवाज, थैंक यू। परवा कहती है आप भी तो हमारी डॉक्टर है ना, आप 2 घंटे क्रीम के बारे में बताते हो वो भी बगैर फीस के। देख लें बस आप इस्तेमाल करें तो आपको पता चले कि ये आपको 2 घंटे में क्यों बताते हैं, क्योंकि भाई डी स्किन प्योरी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सदरा इतना क्यों बताती है डी स्किन प्योरी क्रीम के बारे में। अच्छा जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमारे साथ हैं, हाँ ही जलाल चांडियो साहब है। अच्छा मोहम्मद जमान भाई आपने बोला तो सही कि भाई आज हमारी भी फरमाइश है, लेकिन आपने गाना आकर ठक लास्ट लिंक में शेयर कर दिया, तो ऐसा है कि जब आप फरमाइश करें तो स्टार्टिंग में ही अपना गाना लिख दिया करें, भेज दिया करें, ताकि वो हम प्रोग्राम में ना जब भी मुझे टाइम मिले तो आपके लिए गाना लगा सके। तो अब ये जो आपने लिंक शेयर कर दी मुझे लास्ट में, इस गाने को हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे, नहीं तो फिर हम कल वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे, ठीक हो गया। दर्द दिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो। और कहते हैं कि
1: लबड़न ते यहाँ लाली अच्छा रत कहीं जो पीती रे रत कहीं।
0: अच्छा उनके अलावा शायरी मोकलिया चाहती, हाय बहुत प्यारी पोइट्री चंदा, थैंक यू वेरी मच। फहीम कहते वाह वाह अदा तू भी ऐसा मांग। बिल्कुल ही है यार। और ये दर्द दिल कहती है आज लेट हो गई थोड़ी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा वाकई आपको लेट हो गई। और उनके अलावा हमारे साथ हैं जी अबू हनीफ अल बलोची, कहते हैं कि आज फिर की थी मोहब्बत से तौबा, आज फिर तेरी तस्वीर देखकर इरादा बदल गया, क्या बात है जी क्या बात है। और चाचा कहते हैं थैंक्स फॉर सॉन्ग भाई, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। और बलोच के कहते हैं कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, अल्लाह जाए बुदा कसम दे। जमशेद फारूकी हमारे साथ हैं, कहते हैं प्यारी मरियम फारूक और फारूकी जारिश शहमीर और मुजफ्फरगढ़ से आप हमारे साथ मौजूद है, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया के साथ। हाँ बाबा असा के गानों बुधी भी मजो अची हाँ, असा लिस्ट में जो लास्ट ट्रेक बुधी वेठू था। सो बिल्कुल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दिए हैं, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो आपको जो प्रोग्राम के अंदर नंबर बताया जाता है उसके ऊपर रब्ता किया करें, रब्ता करेंगे तो भाई साहब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि बस आप नंबर के ऊपर रब्ता कर लेंगे, कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, उन्हें बता देंगे कि भाई हमारे यहाँ नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर डी स्किन फेस वॉश, तो वो अवेलेबल करा देंगे। तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश।

दर्द दिल पे वही बोल रही है न न न अच्छा था। और बशीर बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप हमें सुन रहे हैं कराची कायदाबाद से, बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद भुट्टो को सलाम। ओके बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। अखलाक भाई कहते हैं नाइस शो, थैंक यू वेरी मच कहते हैं। जी जलाल जी, जी जी न न न न बोले। किशोर भाई कहते हैं अदा तू जा पंज बजे यार प्रोग्राम जी पोस्ट थे कुछ लिखी भी न था सगू हाँ हाँ बिल्कुल ही आहे पेरा थोड़ो ये हो तो थोड़ो देर सा भी बंद थी हाने तो वरी डियो डियो जको ना सफा अगते थी तो अचे टाइम लगे तो मुके तो एकड़ो वरी टाइम इंदो जदी पोस्ट अपलोड करना सी तो उन टाइम में बस बंद थी वेंदी।

चलिए बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय कीजिए और इस गाने के साथ आप लोगों से लेते हैं जी इजाजत क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। और शबीन जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको प्रोग्राम पसंद आया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बाकी तो पैनल पर सारे मैसेजेस ही तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को यूज करते रहिएगा। कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह, जिनके फीडबैक रह चुके, जिनके गाने रह चुके हैं, सबसे माजरत। सो मोकलानी नाही बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम
5: अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स
6: पासदारी यकीनी बनाए हथे खाली शहरन ते बिना जवाज ए चिर डियारींदड़ ताकत इस्तेमाल कई वही अड़न वाक्यन के रोकण लाओ पाव वरता वन वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात गुजरियल लिया पोजीशन से थियल गालिन बाबत आगाह कयो जरियन मूजिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ए मोहसिन नकवी की मुलाकात तकरीबन डेढ़ कलाक जारी रही वजीर आजम पोजीशन से गालिन बाबत मोहसिन नकवी के हिदायतू भी डिनी

0: पीटीआई लॉन्ग मार्च जो सर वापस वठंदी या हुकूमत अपोजिशन जा मुतालबा तस्लीम कंदी। हुकूमत अपोजिशन विच में गालन जो बियो ऐं फैसलाइतो दौर कुछ देर में शुरू थियण वारो। स्पीकर या सादिक जी ज़ारत हेठ थींदड़ हुकूमत अपोजिशन जी ॻाल्हि में ॿई धुरियूं हिक ॿिए खे गुज़िरियल ॾींहं पेश कयल तजवीज़नि ते जवाब ॾींदियूं। हुकूमत गुज़िरियल ॾींहं पीटीआई खे लॉन्ग मार्च ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जमी हुसैन खान लातालगी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ीर हुसैन ते हमले करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परदेही मीडिया मूजिब ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकी हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालगी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे। पंज ॼणा कतल मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब गांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान गांगरो शामिल आहिनि। बिलावल गांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुला बिरोही बि गोलियुनि जो खाक बणिजी विया। पुलिस जो चवणु आहे त गांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। गांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतोदेरो भरसां ॻोठ वधापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके में बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माश्किल में पुलिस चौकी ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। डिस्ट्रिक्ट बार पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली। वकीलनि सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं रद्द करण जो मुतालबो करे छॾियो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जी वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतिज़ामी बुनियादनि ते विरहाइण वारनि मनसूबनि खे रद्द कयूं था। गंभट में टे ॾींहं अॻु आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान क़तल थियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज। मक़बूल अजीब आरिजो जे अमड़ ॿियनि औरतुनि सां गॾिजी पाक किताब खणी एहतजाज कयो। औरत चयो आहे त मुंहिंजे पुट खे नौकरी ॾियारण जे बहाने कातिलनि 5 लख वरिता ऐं पैसा वापसि घुरण ते नौजवान खे क़तल कयो वियो। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाद ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज। बणियल रादड़ में चिंची रक्षा ड्राइवर हलाईंदड़ रैली कढी ऐं धरणो हयो आहे। उडेरो लाल विलेज में पेट्रोल जे वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ चिंकी ड्राइवरनि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। मुज़ाहिरीन चयो त पेट्रोलियम शयुनि अघनि में लाॻीतो वाद सबबि असांजे रोज़गार सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। तेल सस्तो कयो वञे। कंबर में वधंदड़ बदमनी ऐं पुलिस जे नाहेली ख़िलाफ़ ॿिए ॾींहं बि एहतजाज जारी। ज़िलो सिंगारियो जिदोजहद कमेटी ऐं शहरनि तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त कंबर पुलिस जी नाहेली सबबि समूरो ज़िलो बदमनी जे वर चढ़ी वियो आहे। रोज़ धाड़ा फुरूं ऐं चोरियूं मामूल बणियल आहिनि। आईजी सिंध अमुन बहाल कराए।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, Munfarid aur Jadeed Formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: Finally, ab thoda me time banta hai. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है। सुपर वाइट।

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे नहीं, खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइक था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, आई चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट, उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड में रापर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: हुकूमत ऐं पीटीआई विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु ॿीहर थींदो। हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टी जो अपोज़िशन खे क़ौमी मसइलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए गॾण ते ज़ोर। ॿिन्ही धुरियुनि जो ॻाल्हियूं जारी रखण ऐं अॼु ॿीहर गॾिजाणी करण ते इतफ़ाक़। स्पीकर ऑफिस पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन विच में मुल्की सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं थियूं। हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन हिक ॿिए खे पंहिंजे मौक़िफ़ खां आगाह कयो। स्पीकर अयाज़ सादी ॻाल्हियुनि लाइ अहम किरदार अदा कयो। ॻाल्हियुनि में हुकूमत तर्फ़ां घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, राना सनाउल्ला, अमीर मक़ाम तारिक फज़ल चौधरी ऐं तलाल चौधरी शरीक थिया। पीपल्स पार्टी जी नुमाइंदगी श्री रमा नवीद कमर ऐं एजाज़ जखराणी कई। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गौर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम, राजा असद कैसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हुआ।
1: ये पहला मरतबा है कि हमारी और हुकूमत की ऐसी कमेटी बनी है जिसमें हम सारे लोग मौजूद है स्पीकर साहब के चैम्बर में। मुस्बत पहलू यही है कि कंटिन्यू है कल इंशाल्लाह ताला
2: हमारा गवर्नमेंट से भी कोई नुमाइंदा शामिल होंगे,
1: यही कमेटी होगी, यही हमारी कमेटी है। खान साहब के जो अहकाम होते हैं हम हमेशा खान साहब के अहकाम ही पे अमल दरामद करते रहे।
3: असल ये मुजाकरा जारी रहेंगे, कल फिर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद फिर फैसला होगा क्या करना है।
0: हुकूमत सां सुठे माहौल में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु मंझंदि 2 वॻे थींदो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त उमेद आहे त सूरत हाल बहितरी तरफ़ वेंदी। सेनेट में अपोज़िशन लीडर चयो आहे त असां पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि, हुकूमत पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि, ॿीहर ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं।

0: दहशत गर्दनि खिलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जे सहारा नेशनल एक्शन प्लान त तवाम जे इतफ़िला ते ॿधल हुकुमरानी दहशतगर्द ऐं ॾोहारनि जे गठजोड़ जो ख़ात्मो ऐं पुलिस जे सॻ में वाधंटर करार। ISPR मूजिबि कंहिं बि बहाने सां इंतिशार पखिड़ण या नवमय जहिड़ी सूरताल पैदा करण वारी कोशिश खे कानून मूजिबि बिना कंहिं फ़र्क़ जे फ़ैसिलाइते अंदाज़ में नाकाम बणायो वेंदो। फोम पारां पाक सऊदी ऐं तुर्किया दिफ़ाई मुआहिदे जे आजियां कश्मीरियुनि जे इख़्लाक़ी मदद जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाओ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त क़ौम जी हिमायत सां फ़ौजी मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़ाई सालमियत ऐं क़ौमी सलामती जे तहफ़ुज़ लाइ तयारु आहे। हुकूमत हफ़्ते जे आख़िर में ईंदड़ टिनि ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध करे छॾी। पेट्रोल 2 रुपया 10 पैसा ऐं डीज़ल 3 रुपया फी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओ अघु 392 रुपया 76 पैसा ऐं डीज़ल जो नओ अघु 399 रुपया 64 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 3 खां 5 अक्टूबर ताईं लागू हूंदा। हुकूमत सोमालिया में शहीद थियल टिनी पाकिस्तानियुनि जे पोयरनि लाइ माली मदद जो ऐलान। शहीदनि जे पोयरनि खे 1,25,00,000 रुपया ॾिना वेंदा। शहीद थियलनि जे ॿारनि लाइ मुफ़्त तइलीम, तिबी सहूलियतुनि ऐं रिहाइश जो ऐलान बि कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां शहीद काशिफ़ उमर जे पुट सां राब्तो करे तज़ियत जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे तव्हांजे डुख में बराबरि जा शरीक आहियूं, अकेलो न छॾियो वेंदो। ॿी पाकिस्तानी अमले जे हिफ़ाज़त सां वापसी लाइ हर मुमकिन कदम खयो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा पाकिस्तान
3: टाइम बंद और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज़ आइसक्रीम यूज करके हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है?
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत हो, फ्रेश स्किन।

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम, हाय तजुर्बेकार ऐं महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन @pk वधीक शाम परवेज़ी ख़ैर उस्ताद
1: शोरूम महरापुर साइकिल जो प्यार दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस जो एम सेंटर सही बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेनियर्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए थी मोटरसाइकिल एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज थी क्वालिफाइड ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
2: 93.4
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अरे नहीं, खुश्क और बेरोनो की स्किन और इमेज अच्छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावर जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावर जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट गरुगत, सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: आई जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803843
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: जानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: सुठी नियत सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। पीपल्स पार्टी जी शहरी रहमान चयो त सोशल मीडिया जे बयाननि ते रद्द अमल न ॾींदासीं। पार्टी पोज़ीशन बाबति ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। अॼोकी गॾिजाणी में मस्बत नतीजे लाइ पुरउमेद आहियूं।

साइंसी तहक़ीक़ ऐं तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कराची जे नाह अस्पताल में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वही आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

इस वक्त बज रहे हैं, टाइम हो चुका एक तीन हो चुके हुए आप लोग आप सब की अपनी आरजे प्यारी आरजे कोमल खान आप लोग इस वक्त रिश्ता घर से मैं आपके मजीद आप लोग हैं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं रिश्ता तो बन ही गया इस वक्त आपका अपना प्राइवेट शो है और आप लोग मुझे ज्वाइन है हमारे जी एफ एम के पेज पर भी और लाइव मुझे रेडियो पे सुन सकते हैं मुझे रेडियो पे लाइव ज्वाइन कर लिया है और जो मुझे लाइव ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पेज पर हमारे तो जी बिल्कुल आज कमेंट्स करके बताएं कि मुझे अभी इस वक्त कहाँ से सुन रहे हैं कहाँ कहाँ मेरी आवाज़ उनकी समातों से टकरा रही है पाकिस्तान के किस किस शहर के किस शहर की किस गली की किस गली कूचे कोनों में जा रही है आवाज़। तो जी बिल्कुल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे सवाल जवाब बातें आप लोगों के साथ प्रोग्राम में चलती रहती हैं और ये वो प्रोग्राम है जहाँ इस ख्यालात को एहसास को इजहार के लिए आवाज़ दी जाती है वो आवाज़ बनती हूँ मैं आप सबकी अपनी अर्जी है आप लोग शाम को पहली शाम अक्टूबर की है ये वालों अपने लिस्ट अपने वकारी के सबके नाम कर दिए भाई चैनल अपने चैनल के भी नाम कर दिए हमने आगे जी तो इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे होंगे मुझे पता है कोई घूम रहे होंगे कोई ट्रिप पे कोई ट्रैवल पर होगा कोई घर के घर में लेटा होगा बैठा होगा या फिर अपनी छत पे कोई बैठा होगा मैं आराम कर रहे खामोशी से लाइट्स ऑन ऑफ करके सुन रहे होंगे ऑन कह रहे थे गलती से जनाब तो वैसे भी मौसम थोड़ा थोड़ा तब्दील हो चुका है ठंडा ठंडा सा मौसम भी आ चुका है और आज का मेरा अच्छा सा टॉपिक है कि अच्छा टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर हम उस टॉपिक पर बात भी करेंगे क्या वाकई ही ये एक टॉपिक है वैसे तो मेरा कुछ और था लेकिन मुझे फिर ये जहन में आ ये किसी वजह से तो मैंने कहा जिसको क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए इस बात को तो जी बिल्कुल कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते अब इससे आपके माइंड में क्या कीजिएगा मुझे बताइएगा तब तक हम थोड़ी अक्टूबर को वेलकम कर लेते हैं अक्टूबर की भी बात कर लेते हैं अक्टूबर की पहली शाम हमारे शो की है तो हम इसे अक्टूबर के नाम कर देते हैं चलें ये शाम की तो जी अक्टूबर की शाम है

मौसम बदल चुका है, अक्टूबर ठंडी मीठी मीठी सी शाम आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे जरूर बताएं, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आती सर्दियां और जाती गर्मियों का मौसम है। गर्मी को करें बाय बाय, सर्दी को करें वेलकम। तो जिस तरीके से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बहुत सी बातें आप लोगों से करेंगे, क्योंकि हम बातें नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कैसे गुजरेगा, और बात हमारी बातें तो रौनक है प्रोग्राम की, ठीक है ना। तो आप लोगों की बातें शामिल होंगी तो प्रोग्राम ही हमारा आगे बढ़ेगा। ये कोई सर्दी गर्मी

भारत सिटी का हो चुका है। तो इसी के साथ एक अच्छा सा सॉन्ग भी प्ले करते हैं, फिर वादे जाते आप लोग के साथ करते रहेंगे। तो जी फर्स्ट जो सॉन्ग है मैं प्ले करने जा रही हूँ, जिन्हें जमशेद की खूबसूरत सी आवाज में मैंने प्ले किया है, ना तू आएगी। तो जी शायद ये सर्दी को बुला, लेकिन सर्दी तो आ चुकी है। चलें जी हम भी इनके साथ इंजॉय करते हैं। हम लोग सर्दी को पूरी घर में याद कर रहे थे ना, वो आ गई है। चलें जी इंजॉय करें। आवाज के रिश्ता में मैंने पहली जो है सॉन्ग, पहला आवाज, पहली जो सॉन्ग है वो मैंने आवाज शामिल कर दी है, जिन्हें जमशेद की खूबसूरत सी आवाज। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। आजा भाई आजा सर्दियाँ।

टाइम हो चुका है, मैं सोच रही हूँ कि ब्रेक के बाद करेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं ना इसको, तो सही रहेगा क्योंकि टाइम होने वाला है ब्रेक का प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में, और फिर ब्रेक के बाद में आप लोगों के साथ

0: at 5:30 p.m.
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी। पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूम

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड रंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

दोस्तों के कभी कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए पुराने दिन याद आ जाते हैं, किसी सड़क पर चलते हुए गुजरे लम्हे साथ चलने लगते हैं, कुछ रास्तों पर हंसी गूंजती हुई नजर आती है, कुछ पर खामोशी का गुजर होता है, लोग बदल जाते हैं मगर रास्ते वही रहते हैं, और जब कभी फिर उसी रास्ते से गुजरना हो तो एक लम्हा ऐसा लगता है वक्त इधर ही कहीं बिछड़ा हुआ हो, वहीं रुक जाए या रुक गया हो। शायद इसीलिए कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो हमारी जिंदगी के वो बाप होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी मुकम्मल तौर पर भूल नहीं पाते। जी बिल्कुल, इतना यही बात।

लिसनर्स के साथ ही हमारे एक और लिसनर्स हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा इन्होंने लड़का ना सेम ज्वाइन किया है, ये कहते हैं गुड इवनिंग हाय हाउ आर यू, तो जी शो इज वेरी नाइस, जाने जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ अली का ज्वाइन किया है। अच्छा जी, तो एक बात मैं आप लोगों से कहूंगी

जो है जब भी कोई मतलब मैसेजेस करें चाहे 888 पे खास करके जब भी आप लोग करें ना तो आप लोग जो है ना प्रोग्राम का नाम या होस्ट का नाम लाजमी लिखा करें ताकि फिर वो हमें शामिल करने में भी आसानी रहती है। ओके जी, इसके साथ ही प्रोग्राम में टाइम हो चुका है 5:58, यानी बस अब एक घंटा गुजर गया और पता भी नहीं चला कैसे टाइम गुजर जाता है। तो जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ रास्ते रास्ते नहीं होते, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और आप लोग कैसे जो है इस शाम को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी होगी, यानी कि मज़े ही मज़े हैं। और ख़ासकर स्कूल भी ऑफ होते हैं, ये देखें सैटरडे संडे स्कूल भी बंद, कभी कभी जो बचपन ने दुआएं हमारी मांगी हुई थी वो आज कभी हो रही, कभी कभी होता था बचपन में कि आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, आज नहीं जाए, तो दुआएं उस अब कबूल हो रही हैं। अच्छा, कौन कौन ये दुआएं मांगता था, तो जी हम इसे बात करेंगे, किसी दिन इस टॉपिक पर बात करते हैं, अच्छा सा टॉपिक इसी भी देखिए यादें वापस आ देंगे आपके, स्कूल का टाइम आपको याद आने लगेगा। तो जी बिल्कुल, अब टाइम तो बहुत शॉर्ट नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास भाई, पर मैं ये कहने वाली थी कि अभी टाइम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 6 PM हो जाएंगे और मुझे एक लेना होगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन सबसे न्यूज ब्रेक भी होता है जो मैं लास्ट में लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी खबर से बाखबर रखना है हमें, आपको पता चले कि और क्या

0: अच्छा बिल्कुल इस वक्त टाइम हो चुका है 6 PM और हमें लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी, लेकिन इससे पहले लेंगे एक न्यूज ब्रेक, उसके बाद आपके साथ कंटिन्यू करते हैं आवाज का रिश्ता.
1: It's 6 PM. This line check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.
5: 44 साल जो तजुर्बो, हजारे मरीज जो

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइब्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: पीटीआई जो लॉन्ग मार्च खत्म थींदो या न फैसलो अॼु थी वेंदो। हुकूमत ऐं अपोज़िशन ॻाल्हियुनि में मसबत अकबराई लाइ पुरमेन। हुकूमती ऐं अपोज़िशन टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर जारी। हुकूमत, पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन जो वफ़द ॻाल्हियुनि में शरीक। पीटीआई जो बानी सां मुलाक़ात वारो मुतालबो अॼु बि बरक़रार। बैरिस्टर गोहर चयो त ॻाल्हियूं नतीजा ॾींदड़ हूंदियूं। सलमान अकरम राजा चयो त मुतालबा तस्लीम न थिया त क़ौम सां गॾु बीठल हूंदासीं। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो त सुठी नियत सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। पीपल्स पार्टीअ जी शेरी रहमान चयो त सोशल मीडिया जे बयाननि ते रदअमल न ॾींदासीं। पार्टी पोज़ीशन बाबति ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। अॼोकी गॾिजाणीअ में मुस्बत नतीजे लाइ पुरमेद आहियूं। भारतीय बॉर्डर फोर्स जी फायरिंग में ॿिनि पाकिस्ताननि जी शहादत ते पाकिस्तान जो सख़्त एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर परॾेही ऑफिस तलब। एहतजाजी ख़त बि ॾिनो वियो। हथे ख़ाली शहरनि खे दरअंदाज़ करणु ॾियण वारी भारतीय कोशिश रद्द। वाक़ियो बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं हक़ ज़िंदगीअ जी संगीन भञकड़ी करार। भारत खां ज़िमेवार बॉर्डर फोर्स जे अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। परॾेही खाते मूजिबि भारतीय बॉर्डर फोर्स हथे ख़ाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरनि खे शहीद कयो। भारत बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बणाए। हथे ख़ाली शहरनि ते बिना जवाज़ ऐं चिड़ ॾियारींदड़ ताक़त इस्तेमाल कई वई। अहिड़नि वाक्यनि खे रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि। साइंसी तहक़ीक़ ऐं तरक़ीअ खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे। कराची जी जना अस्पताल में तकरीब के खिताब कंदे सिंध के वडे वजीर मुराद अली शाह चयो तो जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताई रसाई के वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सेहत वाले शोबे में सहूलतूं ॾींदी।
1: प्लस में असां सरियाम जेका बि रोड ते कारा वार न कयूं असांजो कुलु मौसम बाज़ी आहे कहिड़ो बि न कयूं। पुलिस सां मुतालबो आहे त असांखे हक़ खपे न खपे।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
3: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
6: GFM 88 Network, सिंध की आवाज़।

जंहिंजो तन तंदुरुस्त उन जा सभई सुख संदी बाक़ी रोगी रत पल पल पलजो पए। अस्सलामु अलैकुम सामीन, मां आवां जो मेज़बान एहसान अली सियाल ऐं आवाज़ सां ॿुधी रहिया आहियो GFM 94 मैरापुर जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असां गॾु मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि।

0: आया हूं असने प्रोग्राम में लाइव कॉल जारी शामिल थी सको था असन जे लाइव कॉल जो नंबर आ है 0301-196-851 0301-219-6851। सब का पहले असं डॉक्टर साहब के पंजे प्रोग्राम में खुश आमदी चाहता सी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर।
0: सर की आयो त बस ठीक है
1: जी सही अल्लाह ताला जा करोड़े असन
0: सर तमाम घणी वेर मान तवा कीमती वक्त दिना असन के पंजे सजणन के केड़ो अज केड़े मौजू ते पंजे जान देन चाहिदा सर।
1: औज बिललाह मिन शैतान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला सब तारीफ हो रब पाक जो जेको असन खे जारे थो खराए थो रोजी दे थो खुशी दे थो सबनी जमीनी आसमानी आप तुम खां महफूज रखे थो। प्रोग्राम से अच्छी गाल बर वक्त टाइम से नशर है हजारें सामीन के लिए प्रोग्राम जो सेहत पे मुबनी मसलन के लिए होंद है सेहत के हवा से जी भी इन मसला हूँ जान हों देसी टोटका हूँ वो असे बुधदान तचाइंदा हूँ। हमें खबर है तो असि क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के नाले से मेहरापुर शहर में मौजूद है। एड्रेस अवे एक दफो बीहर नोट कराइंदा हल्दी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू बधन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेहरापुर। टाइमिंग सुबह जो 11 बजे का शाम जो 5 बजे तक मौजूद होना हूँ। अड़े तरीके से हफ्ते जहाँ 6 दी असि क्लिनिक मेहरापुर शहर में खुल रही है। एक अंगारे जो ढी क्लिनिक बंद होंगी है बाकी जुम्मो छंछर आचर सूमर अरबा खमीस क्लिनिक खुल होंगी है। इनमें स्पेशली 3 दी चेकअप फीस फ्री पेशेंट्स के लिए पैकेज होंगे है जो सिर्फ चेकअप फीस फ्री जो होंगे है वो रखल होंगे है जुम्मे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी बकाया दवा मरीज के वी पी है। 3 दी सिर्फ चेकअप फीस फ्री होंगी है जुम्मे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी अंगारे जो ढी क्लिनिक बंद रही है। एक ज़रूर नोट पा में कर छो तो बेहतर रो छो जो घा पेशेंट अंगारे के ढी अची परेशान थी तो जो है सो डॉक्टर साहब होंद या न होंद तो उन नोटिस कर तमाम जरूरी होंगे है। असा पाँच प्रोग्राम से अच्छी गाल में मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से जान दींदा अड़े तरीके से अवं दिठो हों तो खास कर सो अजकल या हूँ भी जो आम तौर पर भी जो आ खुड़ी जो सूर यानि हील पेन जैसे अस चवंदा छोजो असं वट भी जैसे पेशेंट्स ज़्यादातर जो बीमारी जैसा तो अस कोशिश कह तो उन इशू के हाईलाइट क्यों उन बारे में थोड़ी जान दूँ जी अगते पेशेंट के का अड़ी तकलीफ थे थी तो वो असाजे मुस्तफीद जे असा जो मुफीद मशवरा हूँ उन्होंने मुस्तफीद थी सो या उनके जान होजन खपे तो ही मसलो जे थे तो इनके लिए असा एडवांसली करें कड़ी जो सो रोकथाम करण घुर्जे या कड़ा उपाय वन घुर्जन कड़ी केयर करण खपे या कड़ी ट्रीटमेंट वन घुर्जे अड़े तरीके से सो अवे खबर है तो हील पेन यानि खुड़ी जो सूर पैर तो यो अवं जरूर बुधाइंदी तो हील पेन जैसे इंग्लिश में हील पेन चबो है आई सिंधी में खुड़ी जो सूर उर्दू में एड़ी जो दर्द एड़ी का दर्द जैसे चूँ एड़ी का दर्द या खुड़ी जो सूर छो पवन उन वजूहत कड़ी होंद्य या उत मसलो होंद।

0: ऐं टाइमिंग सुबुह जो 11 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु। ऐं असांजे प्रोग्राम में बिज़रिया लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851, 0301-2196-851। इन ते कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति तव्हां डॉक्टर साहब खां मालूमात हासिलु करे सघो था। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि।

0: जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाई पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूर, कुन रग जो सूर, नक, कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूर, अधु मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फॉलिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पुशीदा बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कंदा आहिनि। प्रोग्राम जे प्रोग्राम में हिकु पहिरीं कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, केरु आहीं, किथां खां? हिंगोजा मां। केरु आहीं, किथां, केरु पिया ॻाल्हायो?
1: हैलो
0: जी अदा, छा पुछण चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
2: हिन अहिड़े क़िस्म जे कॉलर्स ते असांखे अफ़सोस थींदो आहे जो पंहिंजो त हुननि खे टाइम ख़राबु कनि ई था, पर ॿिए जो बि टाइम जेको आहे सो ख़राबु कंदा आहिनि। इहे जेकॾहिं का ॻाल्हि पुछणी आहे त तव्हां फ़ोन करे उनखे ॿिए जो टाइम ख़राबु न कयो, उनखां तव्हां जेको मसइलो आहे उहो पुछो।
0: बिल्कुलु। प्रोग्राम में हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: जी अदा, केरु आहीं, किथां खां? छा पुछण चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
3: डॉक्टर साहब खां पंहिंजो इहो ई आहे त बाबा हिन में त असांखे थोरी ख़ारिश थी वई आहे बाबा।
0: अच्छा, जिस्म ते ख़ारिश आहे?
3: माना जिस्म पची वियो आहे बाबा साईं।
0: अच्छा, ठीकु आहे, डॉक्टर साहब मूंखे ॿुधायो थो, रेडियो ॿुधो। जी सर।
2: जी साईं, बिल्कुलु ॿुधाई। हिकु त एहतियात तमामु ज़रूरी हूंदो आहे, जंहिं शइ मां मूंखे तकलीफ़ थिए थी, मिसलन वॾो गोश्त आहे या चांवर आहे या जेको मच्छी आहे, अंडो आहे, अहिड़े क़िस्म जूं शयूं जेको आहे मां खाइणु बंदि करे छॾियो। हुन खां पोइ सफ़ाई जो ख़ासि ख़्यालु रखो, ऐं निम मां मौजूदु आहे, निम आहे त परेशानी न आहे। निम जो जेको आहे असां जेके पन आहिनि उहे पाणी में काढ़े उन सां वेझो, या अव्हांजे हिकिड़े क़िस्म जी, बसि हुनखे अंग्रेज़ी में छा हुनजी वज़ाहत करियूं, हिकिड़े क़िस्म जी उन में जेके बि जरासीम आहिनि उहे उनखे ख़तमु कनि था, ज़ख़म ख़तमु करे थी, लेकिन कुझु टाइम लॻंदो आहे। हिकिड़ी जड़ी बूटी आहे, फर्स्ट एड तव्हांखे ॾींदी आहे, हिकिड़ो आर्ज़ी तौर ते तव्हांखे यानी फ़िलहालु जिस्म में जेको आहे सो रत खे साफ़ु करे छॾे थी। ऐं इन जूं निमरियूं जॾहिं थींदियूं आहिनि, निमरियूं खाइण सां रतु साफ़ु थी वेंदो आहे, जेके बि जिस्म में ज़हरीला मादा हूंदा आहिनि उहे ख़राश थी वेंदा आहिनि। तव्हां इहो इस्तेमालु कयो, पनीर जेको आहे सो राति जो पियो, जेकॾहिं नथा करे सघो त असां वटि होम्योपैथिक में इन जी ट्रीटमेंट आहे, तव्हां हिकु दफ़ो अचो, दवा वठो, इनशा ताला ठीकु थी वेंदो।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि, ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। त हाणे वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जो, त हाणे हलूं था शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जी तरफ़। स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून्ड GFM 94 मैरापुर।
4: लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ।

0: एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटो से पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नजद गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे, त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस, गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जना पहिरियों कदम वधायो।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
7: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तेलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज़, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो

0: कमजोर, नजर जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8343।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
5: बड़े वजीर सोहेल आफरीदी के भी एतमाद में वर्तवा है.

0: आजकल इस्लामाबाद में काफी कुछ हो रहा है और सूबे के साथ जुड़े हुए हैं, और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, दहशत गर्दी का मुकाबला बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हो रहा है। अगर किसी वजह से वो इन दहशत गर्दों पर काबू नहीं हो सकते, उसके बाद उस दहशत गर्दी का असरा हमारा शहर कराची पे हो, तो इसलिए पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी दहशत गर्दी को एक बहुत बड़ा अहम इशू समझता है। चाहते ही है कि हम सब मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें। और एक तो हफ्ते से वफाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान से और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी से रास्ते में थे कि वो वफाकी हुकूमत ने अपना ज़हन बना दिया था और फौरी से तैयार था कि वो चाह ये रहे थे कि फौरी तौर पर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी नाफिज किया जाए और गवर्नर रूल नाफिज किया जाए। और जबकि गवर्नर रूल और इमरजेंसी एक आईनी हथियार है, जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका, आप अभी पता नहीं 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है या नहीं, इस्लामाबाद तो बंद पड़ा हुआ है, और ये इल्जाम इन पे आ सकता है, ये साबित हो सकता है कि वो वफाक के साथ नहीं दे रहे, तो फिर हमें मजबूरन जो है इमरजेंसी या गवर्नर की तरफ शहर जाना पड़ता। तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि आप पीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने, और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
1: केपी में इमरजेंसी जो फैसलो थी वियो हो, असा वफाकी हुकूमत के गाले लाए राजी क्यों, केपी हुकूमत दहशतगर्दी वाले मसले के अहमियत न दिनी ए वफाक सा सरकार न कयो त मजबूरन इमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वणनो पवे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त इस्लामाबाद में घणो कुछ थी रहियो आहे, 10 ॾींहनि खां शहर बंद आहे, केपी में दहशतगर्दी वधी रही आहे, सूबाई हुकूमत जो समूरो ध्यानु एहतजाज ते आहे, केपी हुकूमत दहशतगर्दी जे ख़ात्मे बाबति वफाक सां मुआदो करे, अफगानिस्तान मां थींदड़ दहशतगर्दी पुठियां भारत जो हथ आहे, बलोचिस्तान जूं बि हालतूं ठीक न आहिनि, केपी में थींदड़ दहशतगर्दी जा असर सिंध ते बि पइजी रहिया आहिनि, दहशतगर्दी पीपल्स पार्टीअ जी रेड लाइन आहे, उमीद आहे त इस्लामाबाद में वेठल सियासी जमातूं मसइले जो सियासी हल कढंदियूं।
0: और आज तक 1999 के जो वाटर रिपोर्ट पे उसे बरामद नहीं होता, खासतौर पर इस शहर कराची को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कराची को वफाक ने एक सतोला सबूत के साथ डील किया गया, और हमारा हम शिकायत करें कहां से शुरू, गैस तो यहां इस सुबह में पैदा होता है, आपके आईन कहता है कि सबसे पहले हक उनका है जहां ये सासा ये रिसोर्स पैदा हो, महरूम रखा जाता है, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखें इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पानी नहीं। केफ्रो का मंसूबा आपने कब से सुनते आ रहे हैं, पिछली हुकूमत में हमने वजीर आजम के साथ एक मंसूबा रखा, तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि हमने बहुत सुना है आपका शहबाज स्पीड की जो नारा है, और वो शहबाज स्पीड अगर कहीं जरूरत उसका है तो हमारा इसके फो की मंसूबा में, अफसोस के साथ मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं। पूरी मुल्क में वोटों पर बन सकता है, लेकिन किसी वजह से हैदराबाद थक की बात आती है तो वो मोटो वे बन नहीं सकता, वफाक ने वहां भी हमें मायूस किया। तो शिकायतें हैं या जो तंकीद है उसको सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, सिंध का कराची का सियासत में भी जो गंध है उसको भी आप अपना काम से साफ कर।
1: सिंध के कदें भी मायदे मौजिब हिस्से जो पानी न मिलो है, कराची समेत समूरे सिंध पानी खोट के मुंह दे रही है, वफाक कराची सा मटली माह वारो सलूक कयो आहे। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जी इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त जेकॾहिं शहबाज स्पीड जी कंहिं रिथा खे ज़रूरत आहे त उहा केफो रिथा आहे, सूबाई हुकूमत सुठो कम करे रही आहे, सिंध में सियासी गंद खे पंहिंजी कारकर्दगीअ सां साफ़ कंदासीं। भारतीय बॉर्डर फोर्स की फायरिंग में बिन पाकिस्तानियों की शहादत से पाकिस्तान जो सख्त एहतजाज, भारतीय नाजिम उमूर परडेही ऑफिस तरफ एहतजाजी खत भी दिनो वियो, हथे खाली शहरियन के दर अंदाज।
2: ये खूबसूरत लम्हा शुरू हुआ एक अग्रीमेंट से इन्होंने प्राइस ऑफर की, ड्राइवर के लिए भी ठीक थी। बस इतना ही करना होता है अपनों के लिए थोड़ा ज्यादा बचाने के लिए।
1: खाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियन के शहीद कयो। भारत बुनियादी इंसानी हक़न ऐं आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बणाए हते खाली शहरियन ते बिना जवाज़ ऐं चिड़े ॾियारींदड़ ताक़त इस्तेमाल कई वई। अहिड़नि वाक्यनि खे रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि। साइंसी तहक़ीक़ ऐं तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे। कराची जी जिना अस्पताल में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी।
3: रोज़ी कंदा जो दुश्मनी असांजी हुजे हा त प्लस में असां सरियाम जेका बि रोड ते कारा वार न कयूं। असांजो कुल मौसम लाजी आहे, कहिड़ो बि न कयूं। पुलिस सां मुतालबो आहे त असांखे हक़ खपे न खपे।
1: रतो देरो में हथियार बंदनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल। माजी वेलनि में पीउ ऐं संदसि ब पुट शामिल। फोतियुनि में रजब घांगरो, संदसि ब पुट रियाज ऐं कुर्बान घांगरो शामिल। बिलावल घांगरो ऐं वाटड़ो अब्दुल्ला बिरोई बि गोलियुनि जो बुक बणिया। पुलिस चयो आहे त वक्तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे।

सिंध जे वकीलनि सूबे जे इम्कानी विरागे खे रद्द करे छॾियो। सिंध जी वहदत ते इम्कानी वार ख़िलाफ़ मुतहिद थी जिदोजहद करण जो ऐलान। हैदराबाद में नो मोर डिवीजन ऑफ सिंध जे उनवान सां ऑल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन। मुख़्तलिफ़ बार एसोसिएशन सां रास्तो रखंदड़ वकीलनि जी वॾे अंग में शिरकत। वकील अगवणनि चयो त सिंध जी वहदत ते सभु वकील मुतहिद आहिनि, विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो। वकीलनि जी गॾियल हक़नि ऐं कानून जी हुकमरानी जे तहफ़ुज़ लाइ वकील बिरादरी मुतहिद आहे।

0: सिंध में सनातन जी तबाही जो जिम्मेवार केर नेबदाद शुरू करे छी सनातन लाए अलाट थियल प्लॉट ए खातन में थींदड़ भत्तियन जो रिकॉर्ड तलब नेब लागापियल खाते के लिखियल लेटर में चयो आहे त केड़ी सेक्रेटरी जे दौर में केतरा सनती प्लॉट कमर्शियल सरगर्मियन लाइ इस्तेमाल करण जी इजाज़त ॾिनी कंहिं केतिरियूं भर्तियूं कयूं समूरा तफ़सील ॾिना वञनि साइट ऐं हैदराबाद में सनती प्लॉटनि जे कमर्शियल इस्तेमाल ऐं भर्तियुनि जा तफ़सील बि ॾिना वञनि केटीएन न्यूज़ जे प्रोग्राम दी मिरर में छिकाईंदड़ इंकशाफ़ गंबट भरसा नारे जा बिरादरी जी बिन धुरियन में जेड़ो ब सगा भाइर कतल माउ समेत टे जणा जख्मी बूटी हाजी उस्मान नारे जो में जमीनी तकरार तां धुरियन में जेड़ो थियो महकुमुद्दीन नारे जो ऐं संदस भाउ राशिद नारे जो मारिजी वियो पुलिस मूजिब ॿई मक़तूल सगा भाइर आहिनि संदन माउ समेत जख़्मी थियल टिन ॼणनि जो इलाज जारी मलीर में बलूचिस्तान जे अॻूणे सूबाई वज़ीर अली हसन ज़हरी ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जी रैली पीपी एमएनए जाम करीम जोखियो सां यकजहती जो इज़हार टटो सजावल मीरपुर साकरो गारो धाबे जी काठोड़ गडाप मलीर दरसाणो छनो ऐं ॿियनि इलाइक़नि मां रैलियूं प्रेस क्लब पहुतियूं बलूचिस्तान जे अॻूणे सूबाई वज़ीर अली हसन ज़हरी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी अॻवाननि चयो त अली हसन ज़हरी लफ़्ज़नि ते माफ़ी न वरिती त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो मुशरफ रोज़ में जेल पुलिस ऐं सेपको अमलदारनि विच में तकरार बाद सेपको अमले ग्रिड बंदि करे छॾी शहर समेत मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जी बिजली बंदि सेपको मुलाज़मनि जो चवणु आहे त जेल पुलिस बिना जवाज़ मुलाज़मनि खे हिरासत में वरितो आहे 11,000 केवी जी तार किरी पई जंहिंखे ठाहिण लाइ बिजली बंदि कई हुई टंडोजाम में सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी जे रिटायर्ड मुलाज़मनि जी पेंशन न मिलण ख़िलाफ़ भुख हड़ताल जारी रिटायर्ड मुलाज़मनि जी भरण घड़ीअ ताईं भुख हड़ताल 24 कलाकनि खां जारी ॿिनि ॼणनि जी हालत ख़राब पेंशन न मिलण मुबैना माली बेज़ाबतियुनि जी जाच करे पेंशन ॾियण जो मुतालबो जेकबाद में बाईपास ते वज़न लाइ लॻल कांटे जे अमले पारां ड्राइवरनि ते मुबैना तशदुद हिकु ड्राइवर ज़ख़्मी ट्रांसपोर्टरनि क़ौमी शाहरा ते ट्रकूं बीहारे धरणो हयो ड्राइवरनि जो चवणु आहे त अमले जे तशदुद सबबि ड्राइवर हज़ार खान ज़ख़्मी थियो आहे पतो वरितो वञे थो अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे कुंभ में भट्टी सूमरा ऐं रिंद धुरियनि में खूनी तकरार जे नेबेरे लाइ नेकवर्धन पारां मेड़मिंट काफ़िलो टिनी धुरियनि मेड़मिंट काफ़िले खे मान ॾींदे ठा लाइ रास्पो ज़ाहिर करे छॾियो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69
4: अरे न खुश और बेरोनो की स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेमे आहिन चावरन जो खूबियो ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चामरन जो खूबियो जिल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन
6: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003202 आई 02424601100
8: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर

0: जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 PM ताईं एड्रेस गुलशन यासीन पेट्रोलियम वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
3: मेहरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद कयो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: किसी आईनी हथियार जरूरत बड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका है, आप अभी पत्नी 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है या नहीं, इस्लामाबाद तो बंद पड़ा हुआ है और ये इल्जाम इन पे आ सकता है, वो साबित हो सकता है कि वो वफाक के साथ नहीं दे रहे, तो फिर हमें मजबूरन जो है इमरजेंसी या गवर्नर की तरफ शायद जाना पड़ता। तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि हम पीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
1: केपी में इमरजेंसी जो फैसलो थी वो हो असा वफाकी हुकूमत के गाले लाए राजी कयो, केपी हुकूमत दहशतगर्दी बारे मसले के अहमियत न डिनी, वफाक सा सरकार न कयो तो मजबूरन इमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वञणो पवे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है तो इस्लामाबाद में घणो कुछ थी रहियो आहे, 10 दिन का शहर बंद है, केपी में दहशतगर्दी वधी रही है, सूबाई हुकूमत जो समूरो ध्यान एहतजाज ते आहे, केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे बाबत वफाक से मुआहदो करे, अफगानिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी के पुठियां भारत जो हथ है, बलोचिस्तान जो भी हालतूं ठीक ना हैं, केपी में थींदड़ दहशतगर्दी का असर सिंध ते भी पेजी रहा है, दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, उम्मीद है इस्लामाबाद में वेठल सियासी जमातूं मसले जो सियासी हल कढ़ंदी।
0: और आज तक 1999 के जो वाटर रिपोर्ट है उसे बरामद नहीं होता, खासतौर पर इस शहर कराची को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कराची को वफाक ने एक सतोला सलूक के साथ डील किया गया और हमारा हम शिकायत करें इस वक्त कहां से शुरू, गैस तो यहां इस सुबह में पैदा होता है, आपकी आईन कहता है कि सबसे पहले हक उनका है जहां ये असासा ये रिसोर्स पैदा हो, महरूम रखा जाता है, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखें इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पानी नहीं। केफ्रो का मंसूबा आपने कब से सुनते आ रहे हैं, पिछली हुकूमत में हमने वजीर आजम के साथ एक मंसूबा रखा तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि हमने बहुत सुना है आपका शिवाज स्पीड की जो नारा है और वो शिवाज स्पीड अगर कहीं जरूरत उसका है तो हमारा इसके फो की मंसूबा में, अफसोस के साथ मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं, पूरी मुल्क में वोटों पर बन सकता है लेकिन किसी वजह से हैदराबाद फक्र की बात आती है तो वो मोटो वे बन नहीं सकता, वफाक ने वहां भी हमें मायूस किया। तो शिकायतें हैं या जो तनकीद है उसको सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, सिंध का कराची का सियासत में भी जो गंध है उसको भी आप अपना काम से साफ करें।
2: सिंध के कदें भी मुआदे मूजिब हिस्से जो पानी न मिलो है, कराची समेत समूरी सिंध पानी खोट के मुंह दे रही है, वफाक कराची से माटेली माओ वारो सलूक कयो है। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन जो चवण हो तो जैसे शाहबाज स्पीड की कें रिथा के जरूरत है तो वह केफो रिथा है, सूबाई हुकूमत सुठो कम कर रही है, सिंध में सियासी गंध के पैं कारकर्दगी से साफ कंदासी।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जना पहिरियों कदम वधायो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल

0: करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003885569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808743।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइब्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉफी।

पहिरीं बानीअ सां मुलाक़ात थींदी, पोइ लॉन्ग मार्च ख़तमु थींदो। पीटीआई हुकूमत खे आगाह करे छॾियो। हुकूमत अपोज़िशन में मुआदे ते इतफ़ाक़ बाद राजा नासिर अब्बास ऐं महमूद ख़ान अचकज़ई विच में राब्तो। महमूद ख़ान अचकज़ई लॉन्ग मार्च जे ख़ात्मे लाइ बानीअ सां मुलाक़ात जो शर्त रखी छॾियो। अपोज़िशन टीम महमूद अचकज़ई जी नयुनि हिदायतुनि बाद हुकूमती वफ़द खे आगाह कयो। ज़रियुनि जो चवणु आहे त अपोज़िशन जी नयुनि शर्तुनि बाद हुकूमत अपोज़िशन विच में ॻाल्हियुनि दौरान डेडलॉक पैदा थी वियो आहे।

आजकल इस्लामाबाद में काफी कुछ हो रहा है और सूबे के साथ जुड़े हुए और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, दहशत गर्दी का मुकाबला बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हो रहा है। अगर किसी वजह से वो इन दहशत गर्दों पर काबू नहीं हो सकते, उसके बाद उस दहशत गर्दी का असरात हमारा शहर कराची पे हो, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशत गर्दी को एक बहुत बड़ा अहम इशू समझता है। चाहते हुए है कि हम सब मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें। और एक तो हफ्ते से वफाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रास्ते में थे कि वो वफाकी हुकूमत ने अपना ज़हन बना दिया था और 100% तैयार था कि वो चाह ये रहे थे कि फौरी तौर पर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी नाफिज किया जाए और गवर्नर रूल नाफिज किया जाए। और जबकि गवर्नर रूल और इमरजेंसी एक आईनी हथियार है, जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका है, आप अभी पिछले 10 दिन से ज्यादा

0: चाहे जाना पड़े, तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि आप पीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
1: खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी जो फैसलो थी वियो हो, असा वफाकी हुकूमत के गाल राजी कयो, केपी हुकूमत दहशतगर्दी वाले मसले के अहमियत न डिनी, वफाक से सरकार न कयो तो मजबूरन एमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वञणो पवे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है तो इस्लामाबाद में घणो कुछ थी रहियो आहे, दह ॾींहनि खां शहर बंद आहे, केपी में दहशतगर्दी वधी रही आहे, सूबाई हुकूमत जो समूरो ध्यान एहतजाज ते आहे, केपी हुकूमत दहशतगर्दी जे ख़ात्मे बाबति वफ़ाक सां मुआहिदो करे, अफ़गानिस्तान मां थींदड़ दहशतगर्दी पुठियां भारत जो हथु आहे, बलोचिस्तान जूं बि हालतूं ठीक न आहिनि, केपी में थींदड़ दहशतगर्दीअ जा असर सिंध ते बि पइजी रहिया आहिनि, दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी जी रेड लाइन आहे, उमीद आहे इस्लामाबाद में वेठल सियासी जमायतूं मसइले जो सियासी हल कढंदियूं।
0: और आज तक 1999 के जो वाटर रिकॉर्ड थे उसे बरामद नहीं होता, खासतौर पर इस शहर कराची को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कराची को वफाक ने एक सतोला सबूत के साथ डील किया गया और हमारा हम शिकायत करें कहां से शुरू, गैस तो यहां इस सुबह में पैदा होता है, आपके आईन कहता है कि सबसे पहले हक उनका है जहां ये रिसोर्स पैदा हो, महरूम रखा जाता है, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखें इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पानी नहीं। केफ्रो का मंसूबा आपने कब से सुनते आ रहे हैं, पिछली हुकूमत में हमने वजीर आजम के साथ एक मंसूबा रखा तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि हमने बहुत सुना है आपका शिवाज स्पीड की जो नारा है, और वो शिवाज स्पीड अगर कहीं जरूरत उसका है तो हमारा इस केफ्रो की मंसूबा में।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।